मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की

बीसवीं तिथि। तदनुसार 14 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में

0: सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए आप और हम सुनते हैं श्री राम चरितमानस।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है।

और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

अभी आपने सुना श्री राम चरितमानस, स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार, जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि बहुत से रोगों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की स्तुति बहुत से दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। और आज का भक्ति संगीत वंदन कार्यक्रम है फिल्मी भक्ति गीत। और ये पहली प्रस्तुति सुहाग फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग। और ये गीत है शिवा फिल्म से, शंकर महादेवन की आवाज में।

0: ये कार्यक्रम है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग और ये गीत शिवाय फिल्म से
1: आग बहे
0: मिथुन सुखविंदर सिंह मोहित चौहान बादशाह मेघा श्रीराम डाल्टन और अनुग्रह की युगल आवाजों में मिथुन का संगीत है संदीप श्रीवास्तवा के बोल।

काम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। मांग तीसरी जब ये खुले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, ऊंच उठे।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग। कुर्बानी फिल्म से लिया है ये गीत किशोर कुमार अनवर और अजीज नाजा की आवाजों में। इंदिवर के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत,

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में ये गीत लिया है फिल्म वक्त से, मन्ना डे की आवाज में, साहिर के बोल रवि का संगीत।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 7 बज रहे हैं। आइए सुने कुछ बातें, कुछ गीत।

दिलों को दिलों से जोड़ता, आपको हमसे, हमें आपसे जोड़ता। सवेरे 7 बजते ही ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, पूरे 1 घंटे आप सुनेंगे बेहतरीन गीत।

दोस्तों, ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। दिन बेहद गर्म है, शाम तपिश भरी है, लेकिन मध्य रात्रि होते होते ठंडक हमें अपनी आगोश में ले लेती है।

जी हाँ दोस्तों, दिन भर गर्मी बहुत तेज, दिल यही कहता है क्या करें क्या ना करें, बस छुपते छुपाते बचते बचाते काम करते रहिए और गर्मी को एंजॉय करते रहिए।

जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, जरूरत के मुताबिक जिंदगी जिया करो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। यह कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत।

0: तो दोस्तों ये था कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत,
1: जिंदगी कहना ही क्या।
0: और इसका सफर आपने तय किया अपने दोस्त शराफत अली के साथ।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: UAE is an important partner.
5: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का 4था सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5

0: मतलब 5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17,

0: भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई

0: मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार, सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Ninh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly

नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी सुधी श्रोताओं का। फिर एक नई सुबह, फिर एक नया दिन और सूरज की हर उठती किरण कह रही है आज कुछ अच्छा जरूर होगा। और इसी सुंदर सोच के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, यही तो दस्तूर है जीवन का कि हर शाम ढलते ढलते कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए सपने सजा जाती है हमारी आंखों में, कि सुबह जब आंख खुलेगी तो एक नए जोश, एक उल्लास के साथ उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करने में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। जैसे जैसे दिन बीतेगा, हम अपनी सफलता की नई इबारत लिखेंगे और शाम होते होते फिर कुछ नए सपनों का ताना बाना बनने लगेंगे। हम भी हर सुबह एक नई ताजगी के साथ इंतजार करते हैं उस नियत समय का जब हमें आपसे मिलना होता है। घड़ी के ठीक 8:30 बजाते ही हम अपनी पूरी टीम के साथ अपना दैनिक कार्यक्रम नमस्कार लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, करवाते हैं आपका अपनी टेक्निकल टीम से परिचय।
1: तो दोस्तों, आज HPT ट्रांसमीटर से हमें साथ मिल रहा है प्रकाश पंवार और नरेंद्र सिंह राठौड़ का।

0: कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं सुनील जयपाल। और प्राइमरी चैनल के इस कंसोल पर अपनी उंगलियों को थिरकाते हैं शराफत अली। और वहीं एफएम चैनल के कंसोल की कमान संभाले हैं साक्षी। हमारे इस प्रोग्राम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने। और मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के प्रस्तुत करता है संजय व्यास। और इस पूरी टीम के साथ मैं कविता पवार
1: और मैं लीना माथुर
0: एक बार फिर से करते हैं आपका स्वागत अभिनंदन।

0: दोस्तों, जीवन निरंतर चलने रहने की चलते रहने की एक प्रक्रिया है। यहाँ चलने की स्पीड का कम या ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि निरंतर चलते रहना, आगे बढ़ना। और जब आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती है तो उसमें कई बाधाएं, कई मुश्किलें भी सामने आती हैं।
1: ये जरूरी है,
0: हाँ,
1: क्योंकि यही जिंदगी को रंग भरते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मुश्किलें आती हैं तो उससे निपटने के लिए कई बार हमें रिस्क भी लेना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो जीवन में रिस्क लेना सीख लेता है या उसकी हिम्मत कर लेता है, वही इंसान इतिहास के पन्नों को बदलने की ताकत भी रखता है।
0: तो फिर जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी सिचुएशन हमें अपने जीवन में मिले, उसमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना ही हमारी समझदारी है,
1: बेशक।
0: है ना? और इस तरीके से आगे बढ़ने से हम सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि उस शिखर पर हम पहुंचते हैं जहां पर हम अपनी, सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ, अपने समाज की और अपने पूरे कुनबे की सफलता का परचम लहरा सकते
1: जी
0: हैं।
1: बेशक।

0: दोस्तों, जब हम जीवन यात्रा की बात करते हैं ना, तो यात्रा में ही छुपा है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। हाँ, ये अलग बात है कि किसके जीवन की कितनी अवधि है ये निर्धारित नहीं है। कोई अपने जीवन में छोटी सी दूरी तय करके अपने स्टेशन पर उतर जाता है या अपना मन चाहा मकाम पा लेता है। कोई व्यक्ति लंबी दूरी तय करने के बाद भी अपने मन चाहे मकाम पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो लंबी दूरी तय करता है पर ठहरता कोई नहीं।
1: हाँ, ठहरता नहीं है, सब अपनी इस यात्रा में जो है चलते ही रहते हैं। अब जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, यात्रा के दौरान जो परेशानियाँ, जो विवाद हमारे मन पर बोझ बना देते हैं, तो ठीक रहेगा कि हम उस बोझ को अपने मन पर लेकर ना चलें,
0: जी
1: क्योंकि ये तो हम यात्रा के दौरान देखते ही हैं ना कि हमारे पास सामान जितना कम होगा,
0: जी
1: यात्रा उतनी ही सुखद होगी। तो बेहतर है कि जो भी परेशानियां आती हैं या जो भी मुश्किलात आती हैं, उनको हम अपने साथ लेकर ना चलें, बजाय इसके कि हम उनको लेकर चलें, उनको ढोएं अपने साथ, हम उनको सॉल्व करने की
0: वैसे
1: कोशिश कर
0: लीना
1: रहे
0: जी,
1: हैं।
0: सड़कों पर भी देखा होगा तो स्पीड ब्रेकर्स जरूरी है
1: हाँ,
0: ना?
1: स्पीड
0: तो
1: ब्रेकर्स।
0: व्यवधान आना जरूरी है, क्योंकि व्यवधान आने से आपके जीवन की जो गति है वो कुछ पल के लिए ठहरती है, सोचने का वक्त देती है और फिर आगे बढ़ने को
1: और
0: प्रेरित
1: फिर
0: करती है।
1: शायद वो आपकी गति को एक तेजी भी देती
0: तेजी
1: है ना,
0: उड़ान, जी
1: आपकी
0: जी
1: कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है
0: बेशक।
1: ना। तो
0: हाँ
1: ये इस तरीके से जो ये जीवन यात्रा, इसमें सबसे ज्यादा अनमोल यात्रा, जीवन यात्रा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा अनमोल है रिश्ते, है ना। और
0: निश्चित रूप से
1: रिश्तों में कभी किसी की कोई कड़वी बात या कोई प्रतिकूल परिस्थितियां अगर रिश्तों पर हावी हो जाए, तो उन्हें थोड़ा सा लेट गो करना भी चाहिए, है ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: संबंध हो या टाइम, ये
0: जी
1: सब एक
0: जी
1: कृतज्ञता, प्यार और अपनेपन, इन दोनों को, इन चीजों से, इन दोनों को, संबंध और समय, इन
0: बिल्कुल
1: दोनों को हम मधुर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। रिश्ते हो, लक्ष्य हो या फिर यात्रा, संयम के साथ जिया जाए उसे,
1: हाँ,
0: और मिठास के साथ अगर आपने अपनी गतिशीलता को आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से आप मनचाही जगह पर

0: दोस्तों, हम सुन रहे हैं गीत, नए नवेले, और बात कर रहे हैं जीवन यात्रा की। तो जो जिंदगी के सफर में जो है, वो चीज़ों को याद रखने की जितनी इम्पोर्टेंस होती है ना दोस्तों, उतनी ही ज़रूरत होती है कुछ बातों को भूल जाने की। और ख़ासकर ये लागू होता है रिश्तों में। रिश्तों में कुछ भूल जाना आपसी प्रेम और आपसी मधुरता को और बढ़ाता है, आपकी तारतम्यता को बनाए रखता है। और ये जो भूल जाने का कर्म करते हैं ना, वो आप भले भूल जाएं, लेकिन समय कभी नहीं भूलता।
1: हाँ, इस जगह पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर हम कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति उन कर्मों का हमें जरूर फल देती है, ये तो हम देखते ही हैं।
0: जी
1: एक जो गिलहरी होती है ना, वो अपने खाने के लिए जो बीज इकट्ठा करती है, वो उसको जमीन में छुपाकर भूल जाती है। अब वो तो भूल जाती है, लेकिन प्रकृति जो है, उस बीज को समय आने पर पौधे के रूप में और फिर पेड़ के रूप में
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: कर
0: जब
1: देती
0: पानी
1: है
0: पड़ता है तो उसमें
1: ना।
0: अंकुरण हो
1: हाँ, सूरज की
0: जाता
1: किरणें, पानी, मिट्टी, ये सब मिलके,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: बस ये, अब ये देखिए, वो पेड़ बड़ा होने से गिलहरी के ही वापस दाने का इंतजाम हुआ, है ना। तो बस यही है कि जिंदगी का सफर है, अच्छे
0: बस
1: कर्म करते जाइए, भूलते जाइए,
0: कुछ भूल जाइए, और
1: कुछ
0: जो
1: याद रखिए।
0: जो कुछ याद रखिए, जो अच्छी बातें हैं उन्हें याद रखिए, और जो कड़वी बातें हैं उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जीवन है।

दोस्तों घड़ी में 9 बजने वाले हैं। यहां हम रुकेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए। प्रादेशिक समाचार के बाद नमस्कार कार्यक्रम जारी रहेगा।

हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित

0: जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पोलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरूआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉ ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा। कल 5 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब

43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और दोस्तों, अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का, और देखते हैं क्या है खास आज के इतिहास में। आज ही का दिन 1948 में, जब इसराइल की स्वतंत्रता का दिन था, और इस दिन यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इसराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की थी।
1: चौदह मई 1908 जब राइट बंधुओं ने पहली बार किसी अन्य व्यक्ति जो कि मैकेनिक चार्ली फरनास थे, उनको हवाई जहाज में यात्रा करवाई।
0: चौदह मई 1954 जब उस समय के लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलनकर ने हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया था।
1: और आज ही का दिन था 1962 का, जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और 14 मई 1992 जब भारत सरकार ने श्रीलंकाई विद्रोही संगठन LTTI पर प्रतिबंध लगाया।

0: दोस्तों, बदलते परिवेश, बदलते मौसम, ये सब बाध्य करते हैं कि जरा रुक कर सोचा जाए कि आखिर ये तब्दीली जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। और शायद यही सोच रही होगी हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर की भी। तो आज का हमारा एक सेगमेंट होता है हमारा पर्यावरण, जिसमें आज हम बात करेंगे एलनीनो या अलनीनो पर। दोस्तों, अलनीनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं। सबसे पहले तो समझते हैं आखिर ये एलनीनो या अलनीनो है क्या। तो ये एक प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में होने वाली एक मौसमी समुद्री घटना है। सामान्य तौर पर समुद्र की सतह का तापमान संतुलित रहता है, लेकिन जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्यतः से ज्यादा गर्म हो जाता है, तब इस स्थिति को अलनीनो कहा जाता है। और अलनीनो शब्द स्पेनिश भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा।
1: क्योंकि ये प्रभाव अक्सर क्रिसमस के आसपास दिखाई देता था, इसलिए मछुआरों ने इसे ये नाम दिया। ये घटना अक्सर वैश्विक मौसम के पैटर्न को बदल देती है, जिससे दुनिया के कई क्षेत्रों में सूखा, भारी वर्षा, भयंकर तूफान और अन्य चरम जलवायु घटनाएं होती है। ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, खासकर पेरू और इक्वाडोर के पास प्रशांत महासागर में विकसित होता है, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया के मौसम के चक्र में बदलाव आने लगता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस वर्ष मई और जुलाई के बीच अलनीनो की स्थिति बन सकती है। कुछ मौसम विज्ञान एजेंसियों का मानना है कि आने वाला अलनीनो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, यहां तक कि लगभग 3 दशक पहले हुई सुपर अलनीनो जैसी घटनाओं के करीब भी पहुंचा जा सकता है।

0: सकता है।
1: और दोस्तों वैज्ञानिक इस बात पर भी जोर देते हैं कि एलनीनो असामान्य रूप से गर्म महासागरों का एकमात्र कारण नहीं है। ये घटना मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन होता है उसके कारण पृथ्वी पर जारी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पृष्ठभूमि में घटित हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। तो भारत की कृषि पानी की व्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहती है, तो एलनीनो के दौरान भारतीय मानसून कमजोर पड़ सकता है। इसका साफ मतलब है कम बारिश, सूखा, जल संकट और खेती पर बुरा असर और गर्मी ज्यादा पड़ सकती है।
0: इसके साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। नदियों और जलाशयों का स्तर, जल का स्तर जो है एलनीनो के प्रभाव से घट जाता है और बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एलनीनो केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि ये हमें प्रकृति के संतुलन का महत्व भी समझाता है। जब पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन भी तेजी से हो रहा है, तब एलनीनो जैसी घटनाएं और अधिक गंभीर प्रभाव डाल सकती है।
1: तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें जल संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाने होंगे, ऊर्जा की बचत करनी होगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करना होगा, क्योंकि
0: इससे जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा उसका असर सीधा हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों एलनीनो हमें ये संदेश देता है कि धरती का मौसम केवल वैज्ञानिक विषय नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो प्रकृति से जुड़िए, पर्यावरण को बचाइए और स्वस्थ भविष्य बनाइए।
1: और दूर दराज इलाकों में बर्फीली जगहों पर रहने वाले चाहे हमारे जानवर दोस्त हों या समुद्र का बढ़ता गिरता जल स्तर हो, है तो हमारे जिंदगी के दोस्त, और हमें कहीं न कहीं उनकी पुकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

0: लीना जी, जब भी काम की बात हम सोचते हैं तो हम अपने जीवन के आसपास, मतलब अपने जीवनचर्या से दूर सोच ही नहीं सकते,
1: बिल्कुल
0: है ना। और अभी के दिनों में खासकर बात करें तो गर्मी की छुट्टियां, एक बहुत बड़ा त्यौहार चल रहा है सभी घर
1: बहुत
0: में,
1: बड़ा त्योहार
0: है ना। क्योंकि ये जब आ रही होती है, मतलब ये महीना शुरू होता है, उससे पहले हम इसकी तैयारियां करनी शुरू हो जाते हैं, हमसे ज्यादा बच्चे तैयारियां करते हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी होती है उसका अंदाजा ही लगाना मुश्किल है,
1: बिल्कुल वो
0: एकदम खिल जाते हैं।
1: हाँ, अपनी स्कूल के आखिरी दिन जब वो घर आते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट उनके हाथ में होती है कि उनको छुट्टियों में क्या क्या करना है।
0: हाँ, और ये जो चेहरे पर खुशी होती है उसका कारण है ना तो स्कूल की घंटी, ना होमवर्क की चिंता, बस मस्ती। कोई नहीं कहता सुबह जल्दी उठो,
1: जल्दी
0: स्कूल के
1: उठो,
0: लिए देर हो जाएगी। ढेर सारा आराम और साथ ही साथ ढेर सारी नई
1: नहीं
0: बातें सीखने का मौका, नई जगह जाने का मौका और नानी दादी से मिलने का उत्सव,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: आजकल के बच्चों में हम ये देखते हैं कि सीखने की ललक भी बहुत है।
0: जी
1: वो हर चीज, देखिए कितनी चीजें उनके सीखने के लिए है और बच्चे हर तरफ जाना चाहते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इन छुट्टियों में बच्चों को किस तरीके से बिजी रखें, किस तरीके से उनका टाइम मैनेज करें कि इनकी जो ये छुट्टियां हैं ये यादगार हो जाए,
0: और रोचक भी रहे,
1: रोचक
0: है ना।
1: रहे।
0: क्योंकि रोचक नहीं होगी तो वो याद नहीं
1: हाँ,
0: रहेगी और
1: याद
0: उसे
1: नहीं
0: जी
1: रहे।
0: नहीं पाता है बच्चा। तो गर्मी की छुट्टियां मतलब नया सीखने का सबसे अच्छा समय होता है। तो इसमें आप बच्चों को पेंटिंग, डांस, संगीत, योग, तैराकी, कंप्यूटर जैसी गतिविधियों की ओर भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अब इन सबको करने से होता क्या है, केवल टाइम पास नहीं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी रचनात्मकता में भी विकास आता है।
1: यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो मोबाइल है इसने सिर्फ बच्चों को नहीं हमको भी बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है। अगर हम यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी चित्र कथाएं, एक हमारे जमाने में
0: कॉमिक्स,
1: आती थी कॉमिक्स
0: जिसे
1: जिसको हम
0: पढ़ने
1: पढ़ते
0: के
1: थे,
0: लिए हम छुट्टियों का
1: हाँ
0: इंतजार
1: बहुत
0: करते थे।
1: इंतजार करते थे और ढेर लाके रखते थे और उनको पढ़ते थे,
0: हाँ,
1: हम कितना पढ़ते थे, हमें उस समय के करेक्टर आज भी
0: आज
1: याद
0: भी याद
1: है
0: है,
1: ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो
1: लेकिन
0: जो
1: अब
0: चित्र कथाएं
1: हाँ
0: होती
1: चित्र
0: थी।
1: कथाएं जो हम पढ़ते थे, अब आजकल के बच्चे तो किताबें भी कंप्यूटर में पढ़ते हैं, है ना, वो कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं और कंप्यूटर उसमें पढ़ते हैं।
0: वैसे साइंस ही मानता है कि जिस किसी बात के साथ चित्र जुड़ा होता है वो आपकी मेमोरी में जगह बना देती
1: हाँ,
0: है।
1: और ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहता है वो। तो अब ये है कि बच्चों को स्क्रीन से हटाने के लिए जरूरी है कि हम वही पुराना दौर वापस लाएं, कुछ चित्र कथाएं लाएं, कुछ इंटरेस्टिंग किताबें लाएं और हम खुद भी पढ़ें
0: बिल्कुल।
1: उनके साथ बैठकर। क्योंकि देखिए ना, ये कहना बहुत आसान है कि बेटा आप सारे दिन फोन देखते रहते हो, लेकिन हम भी तो कभी कभी वही करते रहते हैं ना। तो उनको छुड़वाने से पहले हमें अपना फोन साइड रखना होगा।
0: वैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये स्मार्टफोन हाथ में आया है तो हमने खुद भी वो जो घर गृहस्थी से जुड़ी किताबें होती थी, जो कहानियां होती थी, जो हमें प्रेरित करती थी, जो
1: हाँ
0: हमारे शब्दकोश को बढ़ाती थी, हमने भी तो उससे रिश्ता थोड़ा सा तोड़ लिया है। तो ये समय है, आप भी अपनी किताबों को निकालिए,
1: हाँ
0: बच्चों को भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स पढ़ने को दीजिए, क्योंकि किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाती, वो आपकी कल्पना शक्ति को एक नई उड़ान भी देती है।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: और अब हम उस मकाम पर हैं जहां हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को न सिर्फ जिया बल्कि इस तरह से जिया कि इतिहास के पन्नों में वो नाम सदा सदा के लिए अंकित हो गए, है ना?
1: हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भारतीय सिनेमा के उस महान फिल्मकार की जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज, राजनीति और आम आदमी की जिंदगी को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया।
0: और उनका नाम है मृणाल सेन।
1: मृणाल सेन का जन्म 14 मई 1923 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के फरीदपुर में हुआ। मृणाल सेन भारतीय समानांतर सिनेमा या आर्ट फिल्म आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं।
0: उन्होंने अपनी फिल्मों में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया, इसलिए उनकी फिल्में यादगार रहती हैं। और उनकी फिल्मों की बात करें तो भुवन शोम, एक दिन प्रतिदिन, खंडर, अकालेर संधाने, इनकी कई सारी फिल्में हैं जिनकी खासियत रही यथार्थवाद। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज को सोचने पर मजबूर करते थे और अपनी फिल्मों में आम इंसान की परेशानियों को और उनके संघर्षों को साफ दिखाने की क्षमता भी रखते थे।
1: उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मृणाल सेन का निधन 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुआ।

0: और जन्म दिवस की कड़ी में ही अगर हम आगे बात करें तो आज यानी कि 14 मई को जयंती दिवस है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। 14 मई 1883 को मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में जन्मे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत के प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। अय्यर का एक उदारवादी दृष्टिकोण था और इसी के चलते उन्होंने अपना पूरा न्याय करियर पूरा किया।
1: स्वतंत्रता के बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर देश की संविधान सभा के सदस्य चुने गए और वे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के मुख्य सदस्य रहे। उनका ये कहना था कि धर्मों से संबंधित कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है। आज जयंती दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: दोस्तों, जयंती दिवस के अवसर पर ही आज हम याद करते हैं भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा को। 14 मई 1892 को बंगाल में जन्मे अरुण चंद्र गुहा अपनी कानून की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे। गीता के निष्काम कर्म योग को उन्होंने अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना थी, उसे भी वे बहुत प्रभावित थे। 1906 में बंग भंग विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें अरुण चंद्र गुहा ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की। अरुण चंद्र गुहा ने ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर अनेक रचनाएं की। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित उनकी पुस्तक फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवॉल्यूशन बहुत प्रसिद्ध हुई।
1: जन्म जयंती की कड़ी में एक और नाम को याद करते हैं, शंभाजी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी शंभाजी। 14 मई 1657 को इनका जन्म हुआ और ये विश्व के पहले बाल साहित्यकार हैं। 14 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषणम, हिंदी में नायिका भेद, सात शतक, नक्षिक जैसे ग्रंथों की रचना कर डाली थी और मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और कन्नड़ जैसी भाषाओं पर शंभाजी

जी का प्रभुत्व था। जिस तेजी से वो लिखते थे उसी तेजी से उनकी तलवार भी चलती थी। स्वराज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, हिंदवी स्वराज का विस्तार कर पूरे हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना की इच्छा रखने वाले शंभाजी की इतिहास में सदा स्मृति बनी रहेगी।

जन्मदिवस के बाद अगर हम बात करें पुण्य स्मरण दिवस की, तो आज यानी कि 14 मई को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर का पुण्य स्मरण दिवस है। 1917 में उत्तर प्रदेश में जन्मे जगदीश चंद्र माथुर

0: आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: बचपन से ही साहित्य, संस्कृति और कला के प्रति आपकी गहरी रुचि थी और आगे चलकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण काम किए और अपनी असली पहचान बनाई साहित्यकार और नाटककार के रूप में। आप हिंदी नाटक और एका के साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं।

0: हस्ताक्षर माने जाते हैं।
1: माथुर जी की प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा और उच्च शिक्षा इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने अपना लेखन कार्य जो है अपने अध्ययन काल से ही शुरू कर दिया था, और फिर जब साहित्य से जुड़ने के बाद जब भारत में टेलीविजन का शुरू होने का समय आया, तब जगदीश चंद्र माथुर ने ही टीवी का नाम दूरदर्शन रखा। उनका कहना था कि सरकार किसी भी भाषा में चलाई जाए, पर लोकतंत्र हिंदी और भारतीय भाषाओं के बल पर ही चलेगा। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS और ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही AIR का नामकरण आकाशवाणी किया।
0: जी, और आकाशवाणी के उच्च पदों पर काम करते हुए रेडियो नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में आपने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें याद किया जाता है।

0: और पुण्य स्मरण की ही कड़ी में आज हम याद करते हैं 1902 में जन्मे महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनेता और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर को। बाल्यकाल से ही आचार्य रघुवीर को संस्कृत में गहन रुचि थी और इसी के चलते उन्होंने एक पुस्तक विक्रेता के वहां जाकर संस्कृत के काव्य रामायण, महाभारत जैसे सशक्त ग्रंथों का अध्ययन किया। वो एक महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे।
1: आचार्य रघुवीर ने लगभग 6 लाख शब्दों की रचना की। इसकी शब्द निर्माण की पद्धति बड़ी ही वैज्ञानिक रही और इन्होंने विज्ञान की प्रत्येक शाखा के शब्द कोश की रचना करके अपने नाम को अमिट कर दिया।

0: तो दोस्तों, कार्यक्रम के समापन गीत की तरफ बढ़ने से पहले कर लेते हैं आज की खास बात। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जोधपुर द्वारा सुगम संगीत संध्या स्वर उत्सव का आयोजन कल यानी कि 13 मई की शाम को किया गया। ये आयोजन बृहस्पति सभागार केंद्रीय कार्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें अनुपराज पुरोहित ने भजन की और आमिर हुसैन ने गजल की प्रस्तुतियां की। चलिए बढ़ते हैं समापन गीत की तरफ।
1: देखिए, हमारा 5-स्टार होटल है। यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा था ये, जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
2: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, आज तक हमारा एक भी भांगड़ा या फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
1: नाम तो मैंने भी सुना है।
3: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
2: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
1: ओह, आई सी।
2: हमारे ट्रिप के हर तरह के प्रोग्राम को,
4: प्रोग्राम कोई भी हो, और जब भी हम किसी प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं तो वो सफ़र काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन जैसे ही ख़त्म होने लगता है तब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जी में रह जाती है, और मन करता है कि थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम उन बातों को याद कर लेते। और कई सारे ऐसे व्यक्तित्व भी रहते हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, पर समय नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर नमस्कार का अपना एक उद्देश्य है, कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी, कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, तो कहीं किसी व्यक्तित्व के आदर्शों को टटोला जाए, कहीं मन की बात को कहकर गीतों को नए नवेले तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो फिर लास्ट में समापन की ओर बढ़ा जाए।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बज रहे हैं, आइए सुने लोक संगीत।

0: लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग।
1: अरे ना ले रियरो ओ धीमा रे धीमा।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग, और आज आपको हम सुनवा रहे हैं हंसराज हंस के गाए कुछ बेहतरीन नगमे

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं हंसराज हंस।

सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का सबसे पहला नगमा फिल्म सनम से साधना सरगम और साथियों की आवाजें समीर के बोल आनंद मिलन की धुन है।

अभी आपने सुना साधना सरगम को, फिल्म का नाम था सनम। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत वास्तव फिल्म से, समीर के बोल और जतिन ललित की तर्ज है।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को। फिल्म का नाम था दुश्मन। आनंद बख्शी के बोल थे और उत्तम सिंह की तर्ज थी। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। लेते हैं कार्यक्रम में एक अंतराल और उसके बाद फिर से मुखातिब होते हैं आपसे अंतराल के उस पार।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। करीब, यह फिल्म का नाम जिसका नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू, संजीवनी की आवाजें, राहत इंदौरी के बोल हैं और तर्ज बनाई है अन्नू मल्लिक ने।

सिर्फ तुम, आइए इस फिल्म में आपको सुनवाते हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों का गाया ये गीत। समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म का नाम था जिद्दी। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं खूबसूरत फिल्म में अभिजीत, नीरजा पंडित और साथियों को। गुलजार के बोल हैं और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों को, फिल्म का नाम था दाग द फायर। और श्रोताओं, यह है आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कोयला फिल्म। आइए सुनते हैं उदित नारायण और साथियों को, इंदिवर के बोल हैं और राजेश रोशन की तर्ज है।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: अभी आपने सुना नेक मोहम्मद लंगा को। श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। लेते हैं एक अंतराल और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
0: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। आज हम आपको विविध कलाकारों की गायी कुछ चुनिंदा लोक रचनाएं सुनवा रहे हैं। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मानक राम ढाडी की गायी ये लोक रचना।

ಅವರು ಸಾಧನೆ ಸಿಳೀರಿ ಬಾಗಿಗೈರೆ ಔಪಿಯ ಕಟ್ಟಿಕೀರೀ ದಿನರೇನೆ

अरे बनाथारी उड़ तोड़ी, अरे जाओ मेरे बना उड़ तोड़ी, अरे जाओ मैं भरो रुमाली।

बनाई उड़तोड़ी अरे दादाओं में बना उड़तोड़ी अरे दादाओं में भरो रुमालियों बलिया में सार भरो।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोताओं सुगम संगीत कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के तुरंत बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े

0: चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ चुनिंदा गजलें सुनवा रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं ताहिर फराज के इस कलाम के साथ, जिसे आवाज दी है हरिहरन ने।

आइए सामीन सुगम संगीत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मिताली सिंह की गाई ये गज़ल। कलाम अश्क अम्बालवानी का है।

सुगम संगीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं सुदीप बैनर्जी की गाई ये गजल, इंदिरा वर्मा ने कलाम लिखा है।

अभी आपने सुना चित्रा सिंह को, यह कलाम था निदा फाजली का। और सामीन, ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, जावेद अख्तर का कलाम, आवाज़ जगजीत सिंह की और मौसीकी भी जगजीत सिंह की।

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर हैं। जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद श्री सिंह नागौर के मेड़ता सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वापस जोधपुर जाएंगे। वे वहां रातानाड़ा में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं।

0: राज्यपाल बोरी स्थित गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थान पहुंचे। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित महिला प्रशिक्षणार्थियों के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनका जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित आशीर्वाद समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर प्रोफेसर कैलाश डागा को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। श्री बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और विकास के रूप में हुई है। चारों को जयपुर से गिरफ्तार कर कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेज दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी यश यादव और विकास ने पहले सीकर जिले के एक कोचिंग सेंटर में साथ में पढ़ाई की थी। सीबीआई अब कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों, छात्रों और आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसी उन आरोपियों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। सीबीआई की एक टीम सीकर में और नेटवर्क से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य तथा भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और इसका उपयोग सुशासन तथा समावेशी विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने को लेकर भी साझा हित जुड़े हैं। डॉ जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ विजय वीर सिंह ने किसानों को बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से खेत की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 16 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 167 केंद्रों पर हो रहा है। परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से गड़ीसर तालाब से कार्यालय परिसर तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने रवाना किया। इसमें आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों, शहर के प्रबुद्धजन और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कृषि संबंधी सुझावों का कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसु राम राम और नमस्कार सर। किसान भाइया आपा खेती बाड़ी रा काम काज कर रहे हैं और दोपहरी जो को भगत है अभी वेग्यो है किसान भाई आप रहे दोपहरी भी टेमो टेम करे है और खेती बाड़ी जी का काम काज है लोगो लग आप रहे टेम माते करे जदेज चार पैर जी की ओपत है बढ़िया आवे नलकूप है सिंचेरा जी का भी साधन है उन रोज को उपयोग है बढ़िया तरह से करे आप रहे और ज्यादा से ज्यादा पैदावार किसान भाई लिया करे। किसान भाइया लाला दिना आपने जानकारी दे रही कि भाई

गवार फली रे मैंने आपा खाद एवं उर्वरक और सिंचाई रो जिको प्रबंधन है वो आपा किन तरह सुकर सका। आज आपा जानकारी ले रहा है कि भाई गवार फली री जिकी पैदावार अपन खेतर मैंने लियोड़ी है उन रे मैंने कीट एवं रोग नियंत्रण आपा किन तरह सु कर सका उन रे आपा जानकारी लेवा। सगले सु पहला किसान भाई बात आवे है कि भाई गवारी जी की पैदावार किसान भाई आपके खेतर मैंने ली है उन रे मैंने भात भातरा जी का रोग है लाग जाए करे। जी आप बात करा एंथ्रेक्नोज रोग हुआ करे और रोग पतिया और फलिया माते भूरा रंगरा जी का धब्बा है एवं आप बन जाया करे। इनरे हाथे हाथे जिका पतियारा किनारा होया करे राता पड़ जा। रोग रे नियंत्रण वास्ते किसान भाई री कोशिश आई ज रहे कि भाई बुआई करिया सु पहला बढ़िया आप रे बीजो उपचार करे उन वास्ते थायरम या कैप्टोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दरसु करे। रोग रसित पतिया जैसे मान लो हुजा या फलिया है विरमाते रोग है मैनको जेब ने 2 ग्राम या कार्बोनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना सातु ले 10 दिन रे छेती रे माते फाचो आप रे छिड़काव करे जिनसु एंथ्रेक्नोज को रोग है खत्म हो जाए करे। किसान भैया आपने जानकारी दिया हमें सुनावा आपने फूटरी सी गीत रचना।

किसान भैया आपा जानकारी ले रहा हा कि भाई गंवार फलेरी जी की फसल अपने खेतर महीने लियोड़ी है उन महीने कीट और रोग जी को नियंत्रण है वो आपा किन तरह से कर सका। हम बात आवे कि एक चुंडेल आशिता रोग भी गंवार फलेरी महीने हो जाया करे। रोगी पौधा रे माते कहीं वे सफेद चुन्नी धब्बा जी का है वे आपने दी क्या करे, तो इन रोग रे नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं कर सके के घुलनशील गंधक्री जी की 2 मात्रा प्रति लीटर पानी या थियोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम मात्रा ने प्रति लीटर पानी रे महीने घोल बना परा और आपा छिड़काव करा तो इन रोग से आप नियंत्रण पा सका।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्यनगरी चैनल और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सेंसिटी चैनल। श्रोताओं, दिन के ठीक 1:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी आशा और
1: हंसा विश्नोई का
0: हरा भरा घनी धूप में पेड़ों की ठंडी छांव के एहसास भरा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम की परिकल्पना की है सफलता चारण ने।

0: आशा जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी सखियों के साथ।
1: बिल्कुल
0: और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम आशा जी के साथ ही चलेंगे प्रकृति की मधुर छाओं में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आज का कार्यक्रम, आपके आसपास कोई कोई बड़ा सा पेड़ है यदि, तो उसकी घनी छाओं के नीचे बैठिए। उस छाओं में आप उस पेड़ के प्रेम को महसूस कीजिए और इस प्रोग्राम को सुनिए, है ना?
1: तो हंसा जी, शुरू करते हैं आज के इस सुहाने सफर की खूबसूरत शुरुआत।

0: आहा, ये सुहाना सफ़र, और ये सुहाना सफ़र सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे पुरखों से चला आ रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमें सब कुछ देती है, हमारा उससे बड़ा अटूट रिश्ता होता है। और देखो ना, जैसे एक माँ हमें बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ देती है, वैसे ये प्रकृति है, इसीलिए हम धरती माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ कहते हैं। तो कोई स्वार्थ नहीं रहता है इसका हमारे लिए, और जब स्वार्थ नहीं रहता है तो कुछ वापस लेने का भाव भी नहीं रहता, तो हम इस प्रकृति से लेते ही लेते हैं, इसका दोहन ही दोहन करते हैं, हम इसको देते कुछ नहीं है। और
1: और
0: इसी इसीलिए आज ये स्थिति है कि हमारा पूरा जो विश्व है वो, हमारा देश जो है वो भीषण गर्मी को झेल रहा है।
1: और देखो, जहाँ हम कहते हैं ना कि हवा पानी है ना, ये हमारे जीवन के आधार हैं, और धूप हमें सुकून देती है ना, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा अनमोल साथी है जो बिना कुछ मांगे हमें जीवन देता है।

0: और वो है हमारे पेड़। मैं हंसा ही समझती हूँ कि ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है ना, जो ज़रूरतें हैं हमारी, उनमें ये भी शामिल कर देना चाहिए कि पेड़ के बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि ये जो पेड़ है हमें केवल लकड़ी, फल या ये सब देने के साधन नहीं है, बल्कि ये धरती की धड़कन है, धरती का श्रृंगार है। ये हमें सांसों के लिए ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी में ठंडी छांव देते हैं, और कितने पक्षियों का घर है ये, और ये प्रकृति को सुंदरता से भर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भला हम उन पेड़ों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सब कुछ देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। तो आज हमारे सामने ये एक बहुत ही कहना चाहिए ना कि एक महती आवश्यकता है इन पेड़ों को बचाने की। एक पेड़ 100 सुख देता है, धरती को नया रूप देता है। आओ मिलकर प्रण लेंगे, हर जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं।
0: और देखो, सब मिलकर अगर पेड़ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा मानव जाति को ही पहुंचता है ना। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, पत्थर खाकर भी फल देते
1: फल
0: हैं,
1: देते
0: है ना।
1: हैं।
0: हवा के विष को ये हर लेते हैं, प्राण वायु ये हमें देते हैं, फिर भी ये हमसे कुछ नहीं लेते। ये कितनी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बड़ी बात है। और फिलहाल एक प्यारा सा गीत की ओर चलें।

0: पेड़ों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कई लोगों ने अनूठी मिसाल कायम की है आशा, और यदि हम उनकी कहानियां करें तो हमारा ये प्रोग्राम तो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने सखियों को बताने की कि उन्होंने किस तरह से निस्वार्थ सेवा की, कितने धैर्य के साथ प्रकृति के साथ अपने अटूट प्रेम को साबित किया। तो आज हम जहाँ दुनिया में जो लोग पेड़ काटते हैं, वहाँ एक बुजुर्ग औरत बिना किसी कैमरे के, बिना किसी लाइक के, उन्होंने धरती को फिर से सांसें दी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक की थिमक्का की, जिनकी अच्छा। उम्र 113 वर्ष है और उनके पास ना पैसा था ना शौहरत, और लेकिन जमीन से उनका जो रिश्ता था, उनका जो प्रेम था और उनकी जो आसमान तक जाने की जो सोच थी, उसने कमाल कर दिखाया। उन्होंने 80 साल तक दिन रात मिलकर 8000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और वो उन्हें बच्चों की तरह पालती थी। अच्छा, इनको वृक्ष रानी कहा जाता है, और क्योंकि ये निसंतान थी तो इन्होंने अपना पूरा प्रेम जो है वो वात्सल्य वृक्षों पर लगाया, और इसीलिए इन्हें सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा।
1: और हम अपने राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, आप समझ रही गई होंगी कि मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई की, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और ये हम सभी जानते हैं कि राजा के सैनिक आए थे पेड़ काटने के लिए, लेकिन अमृता देवी तब पेड़ों से लिपट गई थी और तब उन्होंने कहा था,
0: सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर भी कट जाए तो भी पेड़ तो बचना चाहिए। कितनी गहरी सोच थी।
1: और ये देखो, ये जो हम उदाहरण देते हैं ना बार बार, जब भी हम वृक्षों की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, इसलिए देते हैं कि हमें सीखना है इनसे और अपनी धरा को बचाना है।
0: और इस कड़ी में सुंदरलाल बहुगुणा को कैसे भूल सकते हैं, चिपको आंदोलन जिन्होंने चलाया था उत्तराखंड के जंगल को बचाने के लिए, तो वहाँ की जो स्थानीय जाति थी उसको उन्होंने जागरूक किया और उसकी अगुवाई की। इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और इनके बारे में भी कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया, पेड़ों को ही बचाने का काम नहीं किया, बल्कि शराबबंदी के आंदोलन को भी इन्हें रोका, चलाया, और नदियों में, जंगलों में प्रकृति से प्रेम करने वाले जो बहुगुणा जी थे, उन्होंने बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कई छोटी परियोजनाओं को भी बनाया। तो इस तरह से हम और बातें सुनेंगे।
1: और इन लोगों की बात हम करते हैं तो एक और जो हमारे यहीं एक गांव है जिनका नाम आता है श्याम सुंदर पालीवाल, जिनकी बेटी का निधन हो गया था, इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की याद में इस परंपरा को जीवित रखा कि जब भी गांव में कोई बेटी जन्मेगी, है ना, तो वहां बेटी के जन्म पर 111 पौधे की इन्होंने बहुत ही सुंदर परंपरा की शुरुआत की, और आज दिन तक ये परंपरा कायम है। और रक्षाबंधन वाले दिन जो है, जब पर्यावरण महोत्सव वहां पे मनाया जाता है और ये संदेश भी दिया जाता है पर्यावरण का, और इस दिन वहाँ की जो पिपलांतरी गाँव की, ये मैं बात कर रही हूँ राजसमंद का जो पिपलांतरी गाँव है, वहाँ पर बेटियाँ पेड़ों को राखी बांधती है, कि पेड़ जो है भाई की तरह होते हैं, रक्षा करते हैं, जीवन दान देते हैं, तो ये संकल्प लेते हैं।
0: बहुत सुंदर।

0: जहाँ पेड़ लहराते हैं वहाँ खुशहाली मुस्कुराती है, जहाँ हरियाली होती है वहाँ जीवन खिलखिलाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने वृक्षों के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित कर दिया। तो और उनका कहना है कि ये जो पेड़ हैं, जैसे राम सेतु निर्माण में नल, नील और हनुमान ने बहुत बड़ा काम किया था, और साथ में एक गिलहरी का भी योगदान था। तो इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से एक गिलहरी ने अपना छोटा सा योगदान दिया, वैसे हम इस धरती के लिए एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। जबकि ये देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में कितना महान काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को उस गिलहरी की तरह मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम चंद्रभूषण तिवारी जी के, जिनको पेड़ वाले बाबा कहते हैं। ये यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और एक दशक में इन्होंने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया। और वो मानते हैं कि पेड़ जो हैं वो बेटी के समान हैं। और इन्होंने अपनी अपना दूसरा जो करियर था, ये शिक्षक थे, और उस समय इन्हें महसूस हुआ कि शिक्षा देनी है तो मुझे इन बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि इस प्रकृति को बचाओ, इसका संरक्षण करो। इसके लिए सबसे आसान काम था पेड़ों को लगाना।
0: और जयपुर की ही बात करें तो जयपुर की दीप कंवर है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महिलाओं को जागरूक कर रही है, और सड़क के किनारे डिवाइडर के करीब सैकड़ों पौधे लगा चुकी है, पेड़ लगा चुकी है, और साथ साथ ये शिक्षा भी देती है किस तरह से पेड़ लगाए जाते हैं, किस तरह से उसकी पालना हो, जानवरों से किस तरह से बचाना है। तो कई सारी ऐसी महिलाएँ हैं, कई महिलाओं का नाम आ जाता है सबके सामने, और कई जो है चुपचाप ये ऐसे काम करती है कि नहीं पेड़
1: दिखाई
0: हम,
1: नहीं,
0: हाँ, जो दिखाई नहीं देता, जो
1: दिखावा नहीं करती
0: हाँ
1: वो।
0: किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करती है।

0: तो अब इसी उसमें एक और नया नाम है और जिन्हें पद्मश्री भी मिला है। इनका नाम है राही बाई। अहमदनगर की रहने वाली राही बाई पोपरे ने दुनिया भर के लोगों को जैविक खेती के बारे में बताया और इन्हें सीड मदर कहा जाता है। अब आप सोचिए कि उन्होंने ये काम कैसे शुरू किया था सीड बनाने का, क्योंकि देखा जाए तो हम बहुत सारे हमारे ऐसी ऐसे बीज हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उन बीजों को बचाने के लिए इन्होंने ये काम किया। और इनके साथ ये एक दुर्घटना हुई थी कि इनका जो पोता था वो उन्होंने कुछ ऐसी सब्जी खाई जिससे कि वो बहुत बीमार पड़ गया। तो ये उन तब उन्हें लगा कि ये जैविक खेती को मुझे बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं देसी बीजों का बचाव करूं। तो इन्होंने बैंक बना लिया अपना और 50 एकड़ ज़मीन पर ये 16 से 17 प्रकार की फसलें उगा रही हैं। 160 बीजों को इन्होंने सहेज कर रखा है, तो इसीलिए इन्हें सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया।
1: क्या बात है। एक और गांव है हंसा जी इस्माइलपुर, और ये झुंझुनू के आसपास पड़ता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना जाकर तो चारों ओर हरियाली हरियाली है। और ये हरियाली का जो इस हरियाली का जो श्रेय जाता है वो जाता है बीरबल चौहान को, जो कि बिजली विभाग में कार्यरत थे और ये भी पर्यावरण प्रेमी हैं। पिछले 16 वर्षों से अपने गांव में पौधे लगा रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं और वो अब तक हजारों हजारों पौधे लगा चुके हैं और साथ साथ वे इन पौधों को निःशुल्क बांटते भी हैं।
0: तो ये पृथ्वी के प्राण बचा रहे हैं, पृथ्वी का सौंदर्य बचा रहे हैं, हम इन्हें नमन करते हैं।

हमारे जितने भी पूर्वज थे उन्होंने भी और हमारे संतों ने भी प्रकृति पर बल दिया और वृक्षों के संरक्षण की बात कही थी। तो बुद्ध ने कहा था

0: था कि वृक्षों में भी जीवन है, और अब आप सोचिए यदि वो जीवित होकर हमसे बात करते तो किस तरह से करते।
1: और देखो, जहाँ आप बात कर रहे हो पेड़ों की, तो ये जो विशाल दरख्त खड़े हैं गांवों के किनारे, शहरों के किनारे, सदियों से खड़े हैं, और इनकी जो जीवन यात्रा है, इनका जो बचपन है, तो कई गिलहरियाँ, कई चिड़िया या किसान जो होते हैं वो बीज बो देते हैं, और जो गिलहरियाँ होती है ना, वो तो खेलते खेलते और जो बीज है वो ज़मीन में गाड़ देती है, ये सोच के कि बाद में खाएंगे, और बाद में खाना भूल जाती। इसी तरह से चिड़ियाएँ भी, और बाद में ये जो बीज है, हवा, पानी, जो बरसात का पानी होता है, धूप पाकर ये फलीभूत होते हैं। तो जो इनका जन्म होता है पेड़ों का, कुछ इसी तरह से होता है, नन्हे बीज जब धरती के अंदर हम बो देते हैं।
0: और तेज जब वो बीज, छोटा सा बीज बाहर निकलता है, तो उसको सामना करना पड़ता है चिलचिलाती धूप का, तेज हवाओं का, जानवरों का जो उसके आसपास अपने खुरों से उसको हटाना चाहती हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कितने सारे उसको संघर्ष सहन करना पड़ते हैं। कई बार तेज आंधियां चलती हैं जिसमें उसकी डालियां टूटती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो समय के साथ साथ एक विशाल मजबूत पेड़ बनता है जिसकी शाखाएं दूर दूर तक जाती हैं। और ये जो फिर उस समय वो कई तरह के रिश्ते निभाता है, इंसानों से निभाता है, मौसम से निभाता है, अनगिनत ऋतुओं को देखता है, गर्मी में राहगीरों को अपनी छाया देता है, सबसे बड़ा काम। और उसकी उन शाखाओं पर इन्हीं दिनों में फल तोड़ने के लिए बच्चे ऊपर चलते हैं, उसका झूला झूलते हैं। इतना अथाह प्रेम देता है वो इस धरती को, इसकी संतति को। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसको भी ऐसा ही प्रेम दें।
1: और साथ में देखो ना, पेड़ों के नीचे तो बैठकर कितनी हथाइयाँ की जाती है, कितनी समस्याएं सुलझा दी
0: कितने दुख
1: जाती
0: दर्द
1: हैं,
0: गाए जाते हैं।
1: और आज भी गांवों में जो सरपंच लोग हैं, गांवों की समस्याओं को दूर करते हैं पेड़ों के नीचे बैठकर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ एक पिता के समान होता है जो हम सबकी मानवता की पालना करता है, लेकिन पेड़ के दर्द को हम नहीं समझते हैं, पेड़ भी आपस में बतियाते हैं, और कभी कभी जो इसकी शाखाएं हवा के संग मदमस्ती से गूंजती है, झूमती है, पक्षियों का बहुत ही मधुर जो कलरव होता है उसके आंगन को महकाता है, जीवंत बना देता है, और राहगीर उसकी छांव में बहुत सुकून पाते हैं, है ना। लेकिन वृक्ष देखता है कि लोग आ रहे हैं दूर से, हाथों में
0: कुल्हाड़ी
1: कुल्हाड़ी
0: है।
1: लेकर, तब वो एकदम से अंदर अंदर चकपका जाता होगा, है ना, कि मैं जो इनकी पालना कर रहा हूँ, और वास्तव में मुझसे ही इस मानवता का जीवन है, और इस ये खुद के ही जीवन को ख़त्म करना
0: खत्म कर
1: चाहते हैं,
0: रहा
1: ये जो
0: है।
1: कुल्हाड़े ला रहे हैं मेरे पर तो मारेंगे मारेंगे, लेकिन ये जो विनाशकारी समय आएगा ये पेड़ों के काटने से ही आएगा।
0: तो वो ही इतना ही कह पाता है कि मैं धरती की सांस हूँ, मुझे तुम क्यों काटते हो। और ये भी बात सही है कि दुनिया भर में पेड़ों की जो कटाई चल रही है, उसमें से हर प्रजाति लुप्त होती जा रही है, हर वर्ष लुप्त होती जा रही है, और इससे हमारे पर्यावरण को अथाह खतरा है।
1: पेड़ नहीं रहेंगे तो
0: तो हम
1: जीवन
0: कहाँ
1: संभव ही
0: रहेंगे।
1: नहीं है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। अच्छा, ये पेड़ जहाँ बात करते हैं ना, तो ये विज्ञान ने भी ये बता दिया है, तो यूं तो बोल नहीं सकते, पर जमीन के नीचे जो फंगस होती है इनके, उसका एक नेटवर्क होता है और उसके जरिए ये संवाद करते हैं, बातें करते हैं।
6: अच्छा।
5: हाँ, इसको कहते हैं वुड वाइट वेब, और ये एक दूसरे को अपने पोषक तत्व भी देते हैं। मतलब आप सोचिए, हम जो इतने कंजूस हो चले हैं इंसान, और इन पेड़ों को देखिए, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और खतरे के समय एक दूसरे को सचेत भी करते हैं कि खतरा आने वाला है। इसके अलावा भी देखो, यदि देखा जाए तो बहुत अजीब अजीब किस्म के हमारे दुनिया में, इस विश्व में कई वृक्ष होते हैं। उसमें से
6: एक पेड़ ऐसा है जो बिल्कुल जंगल के जैसा है। ये पेड़ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नाम है पांडो, और हजारों हजारों इसके अंदर तनों का समूह होता है, और ये 80,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। तो है ना, रहस्यमय पेड़।
5: रहस्यमय पेड़। ऐसे ही एक इंद्रधनुषी पेड़ है जिसकी हम बात करें, तो ये भी है, रेनबो यूकेलिप्टस कहते हैं इसको, और ये जो इसकी जो छाल है वो 3-4 रंग अलग अलग बदलती है अपना, कभी बैंगनी दिखाई देती, कभी नारंगी, कभी मेहरून। तो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी कलाकार ने कोई कलाकृति बनाई है, ऐसा महसूस होता है। और दुनिया के सबसे पुराने जीव की बात करें तो इन्हें ही माना गया है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हजारों साल से जीवित हैं। कैलिफोर्निया में ब्रिसल कोन पाइन है, जिसको कहते हैं कि 5,000 साल पुराना है। अब आप सोचिए, और ये जो पेड़ हैं वो क्या नहीं करते। एक चलने वाले पेड़ भी होते हैं आशा।
6: अच्छा।
5: इक्वाडोर के जो वर्षा वन है उनमें एक वॉकिंग पाम नाम से एक पेड़ है, जो अपनी जड़ों को आगे बढ़ाता जाता है सूरज के, जैसे जैसे हम ये सूर्यमुखी पेड़ की बात नहीं करते, जिसका सूर्य के साथ साथ जिसका फूल है वो घूमता रहता है, बिल्कुल ये वैसे ही सूर्य के प्रकाश के साथ आगे चलता है, और ऐसा माना जाता है कि साल में 2-3 सेंटीमीटर ये आगे खसक जाता है।

0: सखियो, हम बात कर रहे हैं नारी वाटिका प्रोग्राम में। मैं हूं हंसा और मेरे साथ है
1: आशा।
0: आशा। तो आशा, ये जो पेड़ हैं, अरे हर एक पेड़ की अपनी अपनी खासियत है ना? हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं, और हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमारा जो खेजड़ी पेड़ है उसकी तो बात ही निराली है। इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो पशुओं के चारे के काम में आती हैं और औषधि के रूप में भी प्रयोग होती हैं। और सखियों, इसकी जो छाल है उसका काढ़ा बुखार में काम आता है, त्वचा के रोग में काम आता है, और इसकी सब्जियां तो हम सब खाते ही हैं। सांगरी कितनी ताकत देती है शरीर को। ये जो पेड़ है, जब हमारे देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय इसकी जो छाल होती थी, उस छाल को सुखाकर पीसा जाता था और उसका आटा बना के उसकी रोटियां बनाई जाती थी। तो देखिए, हमारा प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता है।
1: और एक निधिवन का आपने नाम सुना होगा, है ना। निधिवन के रहस्यमयी और मुड़े हुए पेड़ों को भगवान कृष्ण की गोपियां माना जाता है। और ये जो श्री कृष्ण की कथाएं आती है उनसे जुड़ा है वृक्ष कदम। इसके अलावा पारिजात और कृष्ण की कहानियों से ये वृक्ष सारे जुड़े हुए हैं। और कदम को हरि प्रिया भी बोला जाता है क्योंकि ये हरि का प्रिय है। और क्योंकि यहाँ पे कृष्ण वृंदावन में कदम के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे, रासलीला करते थे, और गोपी कृष्ण लीलाओं से यह जो पेड़ है बहुत गहराई से जुड़ा जाता है। और हंसा जी, आपने कालिया नाग का प्रसंग तो सुना ही होगा, हम सभी जानते हैं, है ना। तो ये जो कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध करने के लिए जब यमुना में छलांग लगाई थी ना, तो इसी स्थान से यानी कि गोकुल में एक प्राचीन कदम वृक्ष है जिसको लेकर मान्यता जो हम बता रहे हैं, इसी पेड़ से उन्होंने वहां पे छलांग लगाई थी।
0: मतलब हमारे धर्म से इसको जोड़ा गया है। भले हम तुलसी की पूजा करें, खेजड़ी की पूजा करें, या पीपल की करें, या बरगद की करें, तो हमारी संस्कृति में इसको, इनको बड़ा पवित्र माना गया है। और ये क्योंकि इसको धर्म से जोड़ा गया है, इसलिए हमने इनकी रक्षा भी की है, हमने इनको पूज्य माना है, इनकी रक्षा भी की है। और पीपल की तो बात ही क्या। पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और बहुत ये सुबह और शाम, मतलब ये 24 घंटे ही हमें ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इसके जब पत्ते हिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है मधुर संगीत बज रहा हो।
1: एक इसके पीछे जुड़ी हंसा जी कहानी है। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की थी और उन्हें वही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए थे। और उस पेड़ को बाद में बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हिंदू धर्म में भी पीपल को देवताओं का वास माना जाता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं।

0: हंसा जी, पेड़ खुशहाली का प्रतीक है और बहुत सारे पेड़ हैं जिनके औषधीय गुण हैं, जो फल देते हैं, छाया देते हैं, और उनमें से एक है अशोक का पेड़, जो बहुत ही सुंदर लगता है और औषधीय गुण वाला पेड़ है बिल्कुल। इसके फूल जो होते हैं ना, वो नारंगी रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और अशोक का अर्थ होता है शोक को दूर करने
1: दूर
0: वाला, है
1: करने
0: ना,
1: वाला।
0: सारी चिंता फिकर को दूर करने वाला। और बिल्कुल हम सभी जानते हैं अशोक वृक्ष के पीछे की जो कहानी है रामायण के अंदर, जब सीता को रावण लंका ले गया था, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, और वहाँ वो जो अशोक के पेड़ों के बीच बैठकर सीता जी भगवान राम को याद करती थी, इसलिए अशोक वृक्ष को प्रेम का, धैर्य का और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। और अशोक वृक्ष के नीचे जब वो इस तरह की प्रार्थना करती थी, तो वो भी अशोक हो जाया करती थी, यानी शोक चिंता से दूर हो जाया करती थी।
1: ऐसा माना जाता है। और कालिदास ने भी इस वृक्ष का वर्णन अपनी अपनी किताबों में किया है। ऐसे ही एक वृक्ष है बरगद का पेड़। ओह, बड़ा बड़ा, बहुत विशाल, जिसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे लटकती रहती हैं और नीचे जाकर एक नए पेड़ में, एक नए तने में बदल जाती हैं। और इसे, इस पेड़ को शक्ति, लंबी उम्र और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। बरगद से जुड़ी कहानियाँ में कहते हैं कि पुराने समय में गांवों में बरगद, जैसे पीपल के नीचे भी बैठती थी ना पंचायत, वैसे बरगद के नीचे भी बैठती थी और उसकी समस्या, उसमें बैठ के जितनी भी समस्याएं होती थी उनका समाधान हो जाता था। तो भाई, समस्याएं तो जब इकट्ठे बैठेंगे तो हो ही जाएगा, और फिर पेड़ों की छांव उनको

0: कहना चाहिए कि मस्तिष्क को ठंडा रखती
1: और
0: थी।
1: ये जो पेड़ है ना बरगद का, ये पूजनीय माना जाता है, वट सावित्री व्रत जो किया जाता है यूपी साइड मोस्टली किया जाता है, तो वहां पे बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है।
0: सत्यवान
1: यहाँ
0: से जुड़ी कहानी।
1: सत्यवान से जुड़ी कहानी है जिसमें सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तो ये इस तरह की कहानी, यानी कि हर वृक्ष की अपनी महत्ता है, हर वृक्ष के औषधीय गुण हैं, और हर वृक्ष जो किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।

0: तो ये जो वृक्ष हैं ये हमारे लिए और भी बहुत इनकी महत्वता है, और क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में इनको महत्व दिया गया है, तो उसका कारण यही है कि जब भी धर्म युद्ध होता था ना, तो उसके बाद में जब विजयी होते थे तो जंगल में एक चर्च बना दिया जाता था या मंदिर बना दिया जाता था,
1: अच्छा
0: तो वो जो एरिया होता था, वो जो क्षेत्र होता था, उसको पवित्र वन कहा जाता था। तो ऐसे पवित्र वन दुनिया में कई जगह हैं, जैसे अभी हम निधि वन की बात कर रहे थे, तो वो वैसे ही पवित्र वन है। इसी तरह यहाँ राजस्थान में जो खेजड़ी का जो एरिया होता है, वो विष्णुई संप्रदाय के लिए पवित्र वन है। ऐसे ही ग्रीस में एथेंस की दीवारों के बाहर जैतून के जो पेड़ों का जो जंगल होता था, उसको पवित्र वन माना जाता था। और बाइबल में भी ये उल्लेख है, अदन का बाग, मतलब ये जो वृक्ष हैं इनको स्वर्ग की यात्रा से जोड़ा गया है। तो कहा जाए कि आध्यात्मिक या सांस्कृतिक और धार्मिक कारण से ये सुरक्षित रह गए। यहाँ पर जो भी जीव जंतु की हत्या होती थी, उस पर प्रतिबंध लग गया। यहाँ के जो औषधि पौधे हैं, पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति है, और जो लुप्त तो हो रही है, ऐसी प्रजातियाँ आज बच गई हैं। इसीलिए हम इनको देवभूमि भी कहते हैं। ये देवभूमि कई जगह पाई जाती हैं विश्व में, और हमारे देश में भी, जैसे केरल में इसको कावू, महाराष्ट्र में इसको वारंस, और कर्नाटक में इसको देवरा काडू कहते हैं। तो ये जो है पवित्र वन, जो है कहना चाहिए पवित्र प्रकृति का और मानव का एक अटूट बंधन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अटूट बंधन है। और यहाँ पे एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि पेड़ों की जो तुलना है, प्रकृति की जो तुलना, महिलाओं की जो तुलना है, वो अक्सर प्रकृति से की जाती है
0: बिल्कुल।
1: और दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। सदियों से साहित्य और कला में इसको सहारा गया है। दोनों ही सौंदर्य का, कोमलता का, शक्ति का और सृजनता का प्रतीक है,
0: प्रतीक है,
1: महिला
0: बिल्कुल।
1: और जो पेड़ है। और महिलाओं की सुंदरता प्रकृति की तरह कोमल है, शांत है और मनमोहक होती है, और उनकी मुस्कान खिलते हुए फूलों से की जाती है। होठ जो है उनकी तुलना पंखुड़ियों से की जाती है, और उनका स्नेह जो होता है ना, घने पेड़ों की ठंडी छांव जैसा सुकून देता है। महिलाएं जो एक परिवार की पालना करती है, जैसे प्रकृति हरियाली से धरती को सजाती है, वैसे ही महिलाएं अपने प्रेम से, त्याग से, ममता से जीवन को सुंदर बनाती है। और
0: परिवार
1: जहाँ,
0: को सुंदर बनाती
1: हाँ,
0: हैं।
1: मतलब कि ये अद्भुत, एक हम जब तुलना करते हैं तो एक बेहतरीन संयम,
0: साम्यता दिखाई
1: हाँ, बहुत
0: देती
1: ही
0: है।
1: साम्यता दिखाई जाती है, देती है। और महिलाओं की सुंदरता प्रकृति की सबसे अनमोल रचना होती है। लहराते पेड़ हैं, बहती नदियां हैं, या उनकी तुलना चांदनी रात से भी की जाती है ना। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर गीत जो तुलना कर रहा है। सुन

0: चलते चलते बस आपसे यही गुजारिश कि आप स्वस्थ रहें और हमारे इस दुनिया का तापमान कम हो इसके लिए वृक्ष जरूर लगाएं।
1: तो अब हम आपको बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में सहयोग किया था HPT से विक्रम सिंह भाटी व CL सोनी, कंट्रोल रूम से राय सिंह राव, और प्यारे प्यारे गीतों को पूरे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया कपिल ने। प्रोग्राम की परिकल्पना की थी सफलता चारण ने। तो आप फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही दुआ है हमारी। इसी दुआ के साथ अपनी रेडियो सखी आशा और
0: हंसा विश्नोई को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर केंद्र है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर सूर्यनगरी चैनल और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम सन सिटी चैनल। श्रोताओं, दिन के 2:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश

0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण

0: विभाग दिए गए हैं, अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी

0: है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी जिले का ये इंद्रप्रस्थ। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1284।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
3: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
3: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
3: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
3: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी।

0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं,
1: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
1: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना।
1: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
1: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं, उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
1: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है, और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें।
1: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमार

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
5: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है

0: audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
3: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
4: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
5: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
6: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं,
5: आजा खेलते हैं।
6: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
7: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
6: अच्छा वो क्या?
7: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
8: हाँ दूसरा क्या?
7: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
5: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी सर।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों

0: चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: बिल्कुल।

0: हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
1: बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था।
2: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
3: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
1: बस थोड़ी दूर हो। वो देखो उस गड्ढे के पास।
3: जी
0: अच्छा।
2: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
4: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: मैंने यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब। ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है। हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस

पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1284। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं। आज की ये पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हाँ जी, शाम की हल्की सी हवा है, दिल में कुछ पुराने एहसास और आपके पसंदीदा गानों का खूबसूरत सा कारवा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यमाणी ओनली ऑन 102.1 FM पर। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ
1: हाँ जी, मैं हूँ आप लोगों का रेडियो दोस्त नितेश। और अगले कुछ 1 घंटे तक हम लेकर आए हैं आपसे प्यारी सी दोस्ती, यादें, मोटिवेशन, क्रिकेट और म्यूजिक से भरी एक शानदार सी शाम।
0: आज का थर्सडे स्पेशल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का युवाणी प्रोग्राम में तो दोस्तों की इंस्पायरिंग कहानी, आईपीएल की मजेदार सी चर्चा, सीबीएसई रिजल्ट टॉक और एक बेहद शानदार गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट आपके दिल के करीब बहुत सारे गाने भी आने वाले हैं।
1: बिल्कुल सही कहा राहुल, और उन्हीं गानों के पिटारों में से आपके लिए है आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ दोस्त नहीं होते बल्कि हमारी हिम्मत बन जाते हैं।
1: और आज की कहानी उन दो दोस्तों की है जिनके पास पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े।
0: एक छोटे से शहर में रहते थे अर्जुन और समीर, दोनों बचपन के दोस्त, स्कूल साथ, क्रिकेट भी साथ और सपने भी साथ। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। अर्जुन के पिता छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और समीर के पापा ऑटो चलाते थे। घर वालों को एक ही उम्मीद थी कि बस बेटा किसी तरह से नौकरी लग जाए।
1: लेकिन अर्जुन और समीर का सपना अलग था। उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे एक दिन पूरा शहर उन पर गर्व करे। दिन में कॉलेज और रात को दोनों एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने सपनों पर काम करते थे। कभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से सीखना, कभी फ्री वाईफाई पढ़कर ऑनलाइन क्लासेस देखना। कई बार तो मोबाइल रिचार्ज के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हिम्मत वो कभी कम नहीं हुई।
0: एक दिन समीर ने थक कर कहा, यार शायद ये सब हमारे बस का नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर गरीब होना हमारी कमजोरी होता ना, तो मेहनत करने वाले लोग कभी जीतते नहीं। हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे।
1: उस रात दोनों ने एक प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर शुरू हुआ असली स्ट्रगल। लोग हंसते थे, रिश्तेदार ताने देते थे, मोबाइल चलाने से जिंदगी नहीं बनती, सपनों से पेट नहीं भरता, लेकिन दोनों ने सुनना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत की आवाज पर भरोसा था।
0: 3 साल बाद उसी छोटे से कमरे में शुरू किया गया था उनका काम। आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन चुका था। जिस शहर में लोग उन्हें ताने देते थे, आज वही लोग उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाते थे। और सबसे खूबसूरत बात, सफल होने के बाद भी दोनों ने अपने पुराने कमरे की चाबी अभी तक संभाल कर रखी थी, ताकि कभी घमंड आए तो वो स्ट्रगल याद आ जाए।
1: दोस्तों, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनसे भी बड़ा होना चाहिए पूरा करने का जज्बा। और अगर सफर में एक सच्चा दोस्त साथ होना, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।
0: तो आज अगर आपका कोई दोस्त किसी सपने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि कल वही दोस्त आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवानी थर्सडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूँ आरजे राहुल और आज मेरे साथ
1: मैं आरजे नितेश। जहाँ कहानियाँ सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, जिंदगी बदलने का हौसला भी देती, बिल्कुल इस अगले म्यूजिकल ट्रैक की तरह।
0: फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे और सुनेंगे ये मजेदार से गाने।

0: दोस्तों कहते हैं सपने अकेले देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक सच्चा दोस्त है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस गाने से पहले जो कहानी हमने एंजॉय की थी, वो कहानी थी अर्जुन और समीर की, दो छोटे शहर के दोस्तों की, जिनके पास पैसे कम थे लेकिन हौसले भाई वो बहुत बड़े थे। और आप थर्सडे स्पेशल युवानी कहानी एपिसोड आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई समीर या फिर अर्जुन है और उसको किसी काम में आपकी हेल्प चाहिए तो आप कभी पीछे मत हटिएगा। फिलहाल

वाणी प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और जब कभी भी बाइक पर सवार हो तो हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। प्रोग्राम युवाणी में आज की शाम बहुत सारी बातें भी और बाकी है, और जैसे कि नितेश भैया, आईपीएल चल रहा है, ये भारत का एक त्यौहार चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, और उसकी बात ना हो तो कैसे पॉसिबल होगा। फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे और इस गाने की बात करेंगे, आईपीएल की बातें।

0: हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ब्रेक के बाद ओनली ऑन युवानी एफएम 102.1 पे, जहां सॉन्ग्स भी हिट होते हैं और क्रिकेट टॉक्स भी फुल एंटरटेनमेंट वाली होती है। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नितेश, और मेरे साथ
1: जी
0: हैं
1: बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल की दुनिया की। जो फिर से कल का मैच ने जो बवाल मचाया ना, वो बहुत ही कमाल का था साहब।
0: बिल्कुल सही कहा राहुल। और कल का मुकाबला था आरसीबी वर्सेस केकेआर, और ऑनेस्टली ये मैच नहीं विराट कोहली का कोई पर्सनल कॉन्सर्ट लग रहा था।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विराट कोहली ने जो धुआंधार बल्लेबाजी करी है ना, उनका मतलब अनबीटन 105 रन स्कोरबोर्ड पर लगाना बॉलर्स को ऐसा घुमाया जैसे लग रहा था कि भाई स्पॉटिफाई की कोई प्लेलिस्ट शफल कर रही हो वहां पे।
0: आरसीबी ने 193 रन का टारगेट चेज किया, और वो भी फुल स्वैग के
1: और
0: साथ।
1: विराट कोहली अब जो है वो T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले फास्टेस्ट इंडियन बैटर बन चुके हैं।
0: और राहुल, अगर आईपीएल का एक कॉलेज होता ना, तो विराट कोहली भी टॉपर होते, जो असाइनमेंट भी टाइम पे सबमिट करा रहे, अटेंडेंस भी फुल है, और फेयरवेल में तो भाई असली हीरो है ये वो।
1: और बाकी बॉलर्स की हालत तो ऐसी थी कि सर रीटेस्ट मिल सकता है क्या? फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे। और पॉइंट टेबल्स पर क्या कुछ खास आईपीएल का असर पड़ रहा है, कौन टीम टॉपर बनी हुई है और किन का जो चांस अब बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: इश्क इश्क इश्क सलाम इश्क। वेलकम बैक एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त, और फिलहाल बात आईपीएल की चल रही है। और अब बात करते हैं पॉइंट टेबल्स की। तो आरसीबी इस समय जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टेबल टॉपर बनी हुई है विद 16 पॉइंट्स के साथ।
1: बिल्कुल। और राहुल, जीटी यानी गुजरात टाइटंस भी बराबरी पर है, और एसआरएच सनराइज हैदराबाद तीसरे नंबर पर, और प्लेऑफ रेस अब भी फुल थ्रिलर मूवी बन चुका है
0: जी
1: भाई।
0: हाँ बिल्कुल। और नीचे वाले टीम्स का हाल तो ऐसा है ना कि जैसे एग्जाम में लास्ट बेंचर बोल रहे हों, अभी कमबैक बाकी है मेरे दोस्त।
1: और अब बात है आज के मुकाबले की। दोस्तों, हर मैच प्लेऑफ टिकट जैसा इंपॉर्टेंट हो चुका है।
0: एक गलत मूव और सीधा कैलकुलेटर निकल आता है। अगर ये टीम जीती वो टीम हारी, नेट रन रेट बढ़ा और फिर क्वालिफाई।
1: और ऑनेस्टली राहुल, आईपीएल का असली मजा अब शुरू हुआ है, और हर ओवर टेंशन है, हर सिक्स सेलिब्रेशन है, और हर विकेट मीम मटेरियल है।
0: हॉस्टल में दोस्तों के साथ मैच देखना, मैगी प्लस कोल्ड ड्रिंक प्लस फ्री एक्सपर्ट एडवाइस, यही तो आईपीएल की वाइब है मेरे भाई।
1: और वो एक दोस्त जरूर होता है जो टॉस के बाद बोल देता है, भाई मैच तो है ना यही खत्म हो गया है।
0: बिल्कुल वही कहता है कि टोस्ट के बाद तो भैया मैच यहीं खत्म हो गया। और सब अपनी अपनी जो है वो एक्सपर्ट्स राय बताना, हर वक्त हर समय अपनी अपनी बताना वो जो शुरू कर देते हैं। फिलहाल आज का मुकाबला बड़ा ही खास होने वाला है, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ। और मुंबई इंडियंस की जो हालत है वो फिलहाल थोड़ी खस्ता है, अब उनका कमबैक होना थोड़ा मुश्किल है। वो बिल्कुल उस कॉलेज की लास्ट बैंक बेंचर वाली टीम है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन पंजाब किंग्स के जो है वो पूरे पूरे चांस हैं कि उनका मैच कैसा क्या होने वाला है, देखते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मज़ेदार से गाने जैसे कि ये रहा।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी ऑनली ऑन एफएम 102.1 पे, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं नितेश और राहुल के साथ। राहुल, थर्सडे स्पेशल कहानी एपिसोड चल रहा है और एक कहानी हमने ऑलरेडी बता दी, और जो अगली कहानी है वो रियल कहानी है, और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे भेंट वार्ता की ओर। सीबीएसई 12th 2026 परीक्षा में 97% अंक प्राप्त भूमज चौधरी से राहुल की फोन आउट बातचीत।
1: वेल, जब किसी चीज के लिए हम जब मेहनत बड़े शिद्दत से करते हैं तो रिजल्ट भी हमें उतना ही बेहतर मिलता है। जैसा कि हम सभी को पता है, 12th सीबीएसई का रिजल्ट कल की शाम घोषित हो चुका है। वहीं हमारे साथ इस एग्जाम में 97% प्राप्त करने वाले भूमिज चौधरी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो भूमिज, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: जी नमस्कार, और आपका धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं भूमिज चौधरी कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग जोधपुर से ही की है। मैंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त किए, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए व कंप्यूटर साइंस में 99 अंक प्राप्त किए।
1: भूमिज, मैं जानना चाहूंगा आपने जो है वो मैथमेटिक्स यानी

0: साइंस स्ट्रीम को चुनना ही क्यों समझा सही, ये कब डिसाइड हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है?
1: इसके पीछे का यही कारण है क्योंकि 10th बोर्ड के बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैथ्स और कंप्यूटर में ज्यादा था, इसलिए सबके सहयोग से और मेरी खुद की पसंद से मैंने PCM स्ट्रीम चुनी।
0: तो जब आप अपनी पढ़ाई करते थे शुरू से लेकर अंत तक, जब आपने 12th क्लास में एंट्री की, प्रवेश किया, उस वक्त आपका डेली रूटीन किस तरह से रहता था? आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? क्या आपका बेसिक रूटीन रहता था? क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप हमें?
1: मैं अपनी स्कूल रेगुलरली अटेंड करता था, प्रतिदिन मैं स्कूल जाता था, उसके पश्चात दिन में प्रतिदिन 5 घंटे सेल्फ स्टडी, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर सबको एकदम अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, वो सब करता था।
0: उम्मीद, जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा की तैयारी या किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ होना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब परीक्षा की बात आती है, इतने बड़े एग्जाम की बात आती है, तो शिक्षकों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जर्नी में, 12th क्लास की वाली जर्नी में, बोर्ड एग्जाम्स में, इस एग्जाम में किन किन लोगों का मुख्य तौर से सपोर्ट रहा?
1: जी, मैं मानता हूँ कि सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और मैं अपने स्कूल के सभी शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे पीछे अपना सपोर्ट रखा, मुझ पर विश्वास रखा कि मैं अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता व पूरे परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे को नेगेटिव फील होने नहीं दिया, हमेशा मुझे पॉजिटिविटी से देखा और कहा कि आप बहुत ऊंची सफलता हासिल कर सकते हैं।
0: भूमित, जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में आजकल हम देख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए सही है, इससे जानकारियां भी मिलती हैं कई सारी, लेकिन कई बार ये सोशल मीडिया हमारे जो है वो उस पढ़ाई की जर्नी में वहां बीच में आता है, वहां आड़े आता है। तो उसे आपने किस तरह से देखा? आपके लाइफ में सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरह से था, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल बच्चों की पढ़ाई में, किंतु मैंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज किया। मैंने सिर्फ पढ़ाई की चीजें और जानकारी की चीजों के लिए उसे यूज किया और मैं अपनी मम्मी और पापा के नियंत्रण में ही मोबाइल का यूज करता था ताकि मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हूँ।
0: मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब पढ़ाई शुरू करी और अंत तक एग्जाम टाइम तक जब पढ़ रहे थे, तो आपको ऐसी बीच बीच में ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है कि यार ये चीज मैंने गलत कर ली है, इसको मुझे सुधार देना चाहिए। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो लोग अब 12th में आए हैं, वो ये गलती ना करें जो आपको लगता है कि यार मैंने ये गलती करी? अब जो आने वाले बच्चे हैं वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो अच्छा साबित होगा, वो थोड़ा फायदेमंद साबित होगा इस एग्जाम के लिए।
1: जी, बीच में मुझे भी कहीं कहीं लगा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, स्पेशली फिजिक्स में थोड़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर मेरी पकड़ कम हो रही थी, तो मैंने मेरे टीचर के और माता पिता के सपोर्ट से उसको आइडेंटिफाई किया और उस पर वर्क करने की कोशिश की। तो मैं सभी बच्चों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने शिक्षकों की और माता पिता की और अपनी खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप उससे बेनिफिट उठा सकें।
0: इस एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम की हम बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना बड़ा जरूरी होता है, वो बड़े फायदेमंद साबित होते हैं। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आपने भी जो है वो पिछले साल के एग्जाम के सवालों को सॉल्व किया, आपको उसका फायदा मिला?
1: जी बिल्कुल, मैंने एग्जाम से लगभग 1-2 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे और सभी सब्जेक्ट में किए थे, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व किए जिसका मुझे फायदा हुआ। उन और जो पिछले साल के क्वेश्चंस थे वो कुछ तो एज इट इज इस साल के पेपर में मुझे दिखे।
0: क्या बात है, मतलब जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको भी आप ये बताना चाहेंगे कि भी आप जो है वो एग्जाम से 1 या 1.5 महीना पहले प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको जरूर उस चीज का फायदा मिलेगा। चलो, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट्स तो मेरा फेवरेट है, इसमें तो मैंने महारत हासिल कर रखी है, इसको मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जहां हमारी पकड़ जो है वो कम होती है। अभी आपने उसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया, तो जिन सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ कम होती है, वो कोई भी हो सकता है, तो उस पर वापस पकड़ बनाने के लिए, उसे स्ट्रांग करने के लिए एक स्टूडेंट क्या क्या चीजें कर सकता है?
1: जी, जिस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ कम होती है तो सबसे पहले हम जो स्कूल में एग्जाम देते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कहाँ गलती हो रही है।

0: है, और उस गलती को पकड़कर हम अपने शिक्षक की सहायता से उस गलती को सॉल्व कर सकते हैं।
1: आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे किस चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं? क्या बताना चाहेंगे? आगे के क्या गोल्स हैं आपके?
0: जी, मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी।
1: चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे अब जो 12th में आए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई 12th बोर्ड में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए कोई खास बातें बताना चाहेंगे आप?
0: उनके लिए मैं बस यही बताना चाहूंगा कि उनको अपने जो सीबीएसई का करिकुलम है उसके बेसिस पे उसको सबसे पहले पूरा करें, और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन पे उनको फोकस करना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: और जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस, प्रेशर, ये हमारे पास अपने आप आ जाता है ना चाहते हुए भी। लेकिन इसको दूर करने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम गेम्स खेल सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके पास जब ऐसा कुछ होता था आपके साथ, तो आप क्या चीज़ें कराते थे उस वक्त?
0: जी, जब भी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं या तो अपने परिवार से बात कर लेता था या अपने भाई के साथ खेल लेता था जिससे ताकि मैं स्ट्रेस कम हो सके। जी
1: ओके, थैंक यू सो मच भूमिज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी सही और सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, स्पेशली जो लोग स्कूल में हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, अब उन्होंने प्रवेश कर लिया है, उनके लिए ये बातचीत जो है बड़ी खास रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। सीबीएसई 12th 2026 परीक्षा में 97% अंक प्राप्त भूमज चौधरी से राहुल की फोन आउट बातचीत। इसकी प्रस्तुति और संयोजन रहे राजेश लामरूट। हाल फिलहाल बढ़ेंगे अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर। कहीं जाएगा मत, युवानी का सफर अभी बाकी है। ऑनली ऑन 102.1 FM पे नितेश और राहुल के साथ, और सीबीएसई की जर्नी वाला टॉपिक अभी जारी रहेगा। फिलहाल इंजॉय कीजिए ये म्यूजिकल ट्रैक।
3: थोड़ी मीठी थोड़ी तीखी पिंड में लड़की आ गई है, हायर तोपे मच गए हैं सबकी लटकी सुबह।

0: श्वेता, आपने एंजॉय किया फिल्म यमला पगला दीवाना का गीत नजर बट्टू और सचेत टंटन की दिलकश आवाज में। और वाकई जो सुबेजी का रिजल्ट आया है और जिन्होंने टॉप स्कोर किया है ना, उन पे तो भाई किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं भाई। उन्होंने पूरे साल मेहनत की है और क्या ही नंबर लेके आए। तो चलिए एक नज़र और स्कोरर की तरफ
1: जी
0: डालते
1: हाँ,
0: हैं।
1: बिल्कुल। आज पूरे देश में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो सर्च करी जा रही है कि भैया सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, सीबीएसई का रिजल्ट आ गया।
0: बिल्कुल सही कहा राहुल। और ऑनेस्टली रिजल्ट वाले दिन की फीलिंग्स है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। और किसी के घर मिठाई, किसी के घर कैलकुलेटर, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बोल रहे हैं यार सर्वर डाउन था, मार्क्स तो अच्छे ही आए होंगे।
1: लेकिन दोस्तों, आज हम बात सिर्फ मार्क्स की नहीं करेंगे, बल्कि उस मेहनत की करेंगे जो हर स्टूडेंट ने पूरे साल करी है।
0: और इसी बीच एक खबर काफी वायरल हो रही है। सीबीएसई 12th की टॉपर भव्या राजन, जिन्होंने 500 में से 499 मार्क्स स्कोर किए हैं।
1: क्या बात है, मतलब एक नंबर कहाँ चला गया भाई, ये जानने के लिए तो मेरा जो इंटरनेट है ना वो सीएडी मोड पे चला गया अब।
0: लेकिन मजाक से हटकर ये अचीवमेंट सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। और उन्होंने लगातार मेहनत की है, फोकस रखा है, डिसिप्लिन रखा है, और आज पूरे देश उनके नाम से जान रहा है।
1: क्या बात है। और दोस्तों, हर टॉपर की कहानी के पीछे ना उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी स्लीपलेस नाइट, प्रेशर, सेक्रीफाइसेस और कंसिस्टेंसी भी भरपूर होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बीच बहुत सारी बातें चलेंगी और बात करें।
0: अब जरूरी बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स शायद उम्मीद से कम आए हैं। तो दोस्तों, एक मार्कशीट आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करती है।
1: सही बात है, क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स नहीं, उनकी स्किल्स होती है, उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनकी मेहनत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ऑनेस्टली राहुल, इंडिया में हाफ इंजीनियर्स है ना वो फोटोग्राफर बन चुके हैं, और जो हाफ कॉमर्स वाले हैं ना वो भाई इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं।
1: तो प्रेशर मत लो यार, अपना पैशन ढूंढो और खुद को दूसरों से कंपेयर करना तो बंद ही कर दो। वैसे रिजल्ट आते जाते रहेंगे और दोस्त आपसे पूछते रहेंगे कि भैया क्या कुछ क्या बातें होने वाली है, लेकिन आपको जो है वो अपना हमेशा पैशन ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने और प्लेलिस्ट में नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए। ये देखो भाई, ये रहा।

0: तो इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम युवानी, जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं ऑन FM 102.1 पे। और अब एक नज़र डालते हैं वैकेंसी की और स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट।
1: जी बिल्कुल, SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है साहब।
0: इस भर्ती के तहत ग्रेड सी और ग्रेड डी के कुल 731 पोस्ट पर जो है ये भर्ती निकाली गई है।
1: अगर आपने 12th पास कर ली है और स्टेनोग्राफर स्किल आप अपने आप में रखते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है साहब।
0: बिल्कुल, और राहुल एज लिमिट की बात करें ना तो ग्रेड सी के लिए एज है 18 से 30 साल रखी गई है,
1: और ग्रेड डी की बात करें तो 18-27 साल तक के जितने भी युवा हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
0: और वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होना जरूरी है।
1: साथ ही स्टेनोग्राफर जो कि स्किल आपकी वो मैंडेटरी रहेगी, जिसका टेस्ट स्किल टेस्ट के दौरान लिया जाएगा।
0: और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करो।
1: एप्लीकेशन और डिटेल्स नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं जो कि है
0: राहुल, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.gov.in।
1: और अपने सपनों की प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए साहब। अगर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते तो इसके लिए जो है वो तारीख का बिल्कुल कम ही बची है,
0: क्योंकि मेहनत और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की रियल शॉर्टकट है।
1: ऑल द बेस्ट योर आर फ्यूचर्स। और फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने और प्रोग्राम युवाणी में। थोड़ा समय अभी और बाकी है।

0: दोस्तों, जब दिल से लिरिक्स कनेक्ट करती है ना, तो ये गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जैसा कि आप हाल फिलहाल ये बर्बाद म्यूजिकल ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, हर शाम की तरह आज की वाणी भी यादों, गाने और इमोशन से भरी रही। उम्मीद है आज की कहानी, आज की बातें और आज के गाने आपके दिल तक जरूर पहुंचे होंगे। मिलेंगे फिर एक नई शाम, नई वाइब और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सपने देखते रहिए और अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़िए, जैसे कि हम दो दोस्त आपके साथ थे। मैं आपका रेडियो दोस्त नितेश और मेरे साथ,
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज का नाम राहुल। और आज आपने और हमने मिलकर बहुत सारी बातें करी। CBSE 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके बारे में चर्चा हुई, बहुत सारे गाने सुने और इस बीच कई सारी जो है स्पेशल टॉक हमने बात करी। और हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन रहा राजेश लामरोड का। कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान, नमस्कार।

0: सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। हाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी

0: sectors, the Sensex gained 790 points to close at 75,399. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आइए पहले जान लेते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चौपाल। शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सीमा रेरी गूंज।

ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब जान लेते हैं कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

कल रात 10 बजे आप सुन सकते हैं श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्री रामचरितमानस आप सुन सकते हैं सुबह 6:05 पर।

सुबह 8:30 पर सुनिएगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। दोपहर 1:05 पर सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए देश गान।

0: क्रीमस्तरे नयितुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वी डी सतीशन वर्यः केरलम राज्यस्य मुख्यमंत्री भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे आज नागौर के मेड़ता में राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है।
3: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई ना कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
2: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
4: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंचकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
2: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत को भारतीय लोकतंत्र का चलता फिरता विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने की कवायद करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। राज्यपाल ने आज इस पर अमल करते हुए जयपुर में एयरपोर्ट जाते समय पायलट कार, एम्बुलेंस और दमकल जैसे वाहनों का उपयोग नहीं किया। श्री बागड़े ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद राज्य में ईंधन बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल अलवर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे। वे भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा के सरकारी स्कूल में

0: नए शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर प्रशासन स्तर पर भी ईंधन बचाने को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में पाली में जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आज पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये आयोजन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत किया गया। श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 और 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहला IBCA सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, चीता और जगुआर जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के सुजान देसर में 40 सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर वितरित किए। हुडको की ओर से 25 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों से 15,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। श्री मेघवाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित नए कमरों और लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज भीलवाड़ा के मांडल में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे देश में अपडेटेड और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले का तीखी गांव शत प्रतिशत स्वगणना पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ बजरंग सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस गांव की ये उपलब्धि अन्य गांवों के लिए मिसाल बन रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 2 दशक में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने आज गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपदा के समय लोग NDRF की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना गर्व की बात है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: और अब मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान आज और कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ शेखावाटी अंचल में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी अधिकतम तापमान

44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच 24 घंटों में प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश हुई, वहीं अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और लू का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान फलौदी में रहा, जहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में आज करीब 50 बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए। निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने वाटर पार्क गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुखपाल बराड़ ने बताया कि बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। राज्य के 11 शहरों के 32 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र कल से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान अग्निवीर, सिपाही, फार्मा और धार्मिक शिक्षक सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से आज किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ विजय सिंह वीर ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जैविक कार्बन जैसे तत्वों की सही स्थिति जान सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर देश और दुनिया में थार नगरी के नाम से विख्यात है। सरहदी जिले बाड़मेर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त उछाल के साथ जिले में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सीजन में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। जिले में प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। दिन के अलावा रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने सहित कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के प्रभारी सचिव डॉ. रोहित गुप्ता बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पीने के पानी, बिजली, एलपीजी आपूर्ति, हीट वेव से बचाव और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था

0: और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रामसर का कुआं में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने पिछले दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बाड़मेर में जसदीर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस बीच विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बीती दिनों रेल मंत्रालय की ओर से बाड़मेर को विशेष रेल सेवा की सौगात दी गई। ये रेल सेवा बाड़मेर और हरिद्वार के बीच शुरू की गई है। इसके संचालन से हरिद्वार की धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का फायदा मिलेगा। ये रेल सप्ताह में दो दिन बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रेल सेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोगों को बधाई दी। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में पिछले दिनों हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई गई। इस पर्व को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर साल वैशाख महीने की अमावस्या हाली अमावस के रूप में मनाई जाती है। ये किसानों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर किसानों द्वारा सांकेतिक रूप से खेतों की जुताई करते हुए सुकाल की कामना की गई। इस मौके पर हर घर में बाजरे का खीच और गुड़ की गलवोणी बनाई गई। इस बीच पारंपरिक खेल औंधल घेटों की धूम रही। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो रुख एकदम साफ अर करडो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टा रा पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। अर प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरण रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि आतंकवाद रे खिलाफ भारत रो रुख एकदम साफ है। वे आज नागौर जिला रा मेड़ता माए राव दूदारी मूरत रा अनावरण जलसा माए बोल रहा है। रक्षा मंत्री कहो कि भारत आतंकवाद रा सगान ने मुंह तोड़ जवाब देवन रो बूतो रखे है। वे कहो कि देश अब सरहद री हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान रा मामला माए खुद रे पान उबो फेर रियो है। रक्षा मंत्री राजस्थान री जमीन वीर भूमि बताता था का कहो कि देश री हिफाजत रा काम माए अठेरा सपूता रो मोटो योगदान है।
2: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ

0: भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव।
1: राजनाथ सिंह महिला वारा मान समाज री तरक्की सारू जरूरी बतायो और मेड़ता माय मीरा महोत्सव सारू केंद्र सरकार री ओर 5 करोड़ रूपया देवन रो ऐलान कीनो। जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार महापुरुषा री याद माय पेनोरमा बनार नुवी पीढ़ी ने इतिहास जोड़ रही है। वह कहो कि सरकार नौजवाना महिलावा गरीबा और किसाना रा भला सारू लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहने भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
1: इन पाछे रक्षा मंत्री जोधपुर माय पहली वाला उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री मूर्त रो अनावरण कीनो। रातानाड़ा सर्किल माथे राखी जिया जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही मौजूद रहा। ई मौके श्री सिंह भैरव सिंह शेखावत ने भारत रा लोकतंत्र रो चाल तो फिर तो विश्वविद्यालय बताता था का कहो कि वारी जिंदगी जन सेवा और सादगी री बेहतरीन मिसाल है। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि भैरव सिंह शेखावत सियासत ने सेवा रो जरियो बनायो। लाडला दिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्यू करीची अपील पाछे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ईंधन बचावन रा मकसद वारा आधिकारिक काफिला माय गाड़ियां री तादाद कम करन रा हुकम दीना है। राज्यपाल आज जयपुर हवाई अड्डा ओढ़ी जाती बगत आगे चालन वाली गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल काम नी लीनी। श्री बागड़े जनता उई खुदरी गाड़ियां कम काम लेवन सागे सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन री अरज कीनी। काल अलवर जिला माय न्यारी न्यारी विकास योजनावा जनता ने सौंपण रे मौके राख्या जावण वाला कार्यक्रम माय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वर्चुअल तरीका जुड़ेला। इस दौरान भिवाड़ी माय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट री शुरुआत करी जावेला। इसा गई सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा री सरकारी स्कूल माय नुआ शैक्षणिक ब्लॉक रोई उद्घाटन करियो जावेला। ईंधन बचावन रे बारा माय जाग जगावन सारू पाली माय जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और SP मोनिका सेन आज पैदल चाल और दफ्तर पुग्या। जिला कलेक्टर सप्ताह माय एक दिन पैदल या साइकिल ओन दफ्तर जावन रो फैसलो कीनो है। नई दिल्ली माय 1 और 2 जून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माय पहलो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सम्मेलन रखियो जावेला। इनरी तैयारियां रा सिलसिला माय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुजरात रा सासन गीर माय लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम रो उद्घाटन कीनो। ई मौके यादव कहो कि IBCA रो मकसद बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सरीखा बिल्ली प्रजाति रा मोटा जिनावरा ने बचावन माथे विचार करनो है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर जिला रासोजान देसर री 40 सरकारी स्कूला माय स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर दीना। हुडकोरी ओरों करीब 1.25 करोड़ रूपये रा खर्च मुहैया कराई जा आ साधनाओं करीब 15,000 विद्यार्थियों ने फायदो फैला। श्री मेघवाल स्कूल माय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का न्यू बनवाई जा नुआ कमरा और लाइब्रेरी रोई उद्घाटन कीनो। राज्य माय पड़ रही जोरदार गर्मी बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अहलकारा ने पानी री परेशानी वाला हल्का माय टैंकरा रे जरिए लगातार पानी री पूर्ति तय करावन रा हुकम दीना है। वह आज भीलवाड़ा कने मंडल विधानसभा हल्का माय पीवन रा पानी जुड़ी करोड़ा रूपया रा खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावा रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम जनता ने सौंपया। ई मौके वह कहो कि प्रदेश माय पानी री व्यवस्था ने चोखी बनावन सारू सगला

0: दिनेश भाई तावड़ो रोटे तपती दोपहरी महीने आ जाओ कराना भाई जका ए लूरा जका सरसराटा है बेहीदा मुंह माते थपेड़ो मारे ने एड़ी यूं चरमराट हुए तो एड़े में देखो के जका दुपहिया वाहन चलावे नी और उए में भी बे टाबर जका स्कूल जावे कॉलेज जावे कटे कोई कोचिंग जावे आव जाव करे तो उए में देखो के अगर आप रे मुंडे माते ढकेड़ो नहीं है या आप हेलमेट ढंगरो नहीं पहरियोड़ो है तो ही दो मुंडो जको है लूरे माइन एड़ो लाल टमाटर जियो जा कई जाने मुंह पाक गयो है।
1: सही कहे गुरुंदर भाई, सावचेती राखनी है। देखा हाँ के जिन वगत मैं तो खास तौर से जिका मोटा टबरिया जिका कॉलेज में जावे कई कॉलेज जिका अड़गा है तो आवता आवती देखो घंटो भर आधो पूर्ण घंटो लाग जा हड़का माते तो वाने अपने ओज कहना है की भाई मुंडा बांधन राखना है करना है आता में भी कोई दस्ताना पहन लो कर लो कोई अड़ो सफेद वस्त्र पहरो ताकि के गर्मी जिकी कम लागे। और जी आप बात बताई हेलमेट री वो देखो के चलाउन वाला ने भी लगाना जरूरी है लारे बैठो जिनी लगाना जरूरी है लूसू भी अपने बचाव ऊजा तावड़ेर बगत में हड़का हो जा खाली तो युवा मोटियार देखे खाता खाता घरे जाता रहा।
0: ए जका दुपहिया वाहन है खास तौर माते मोटरसाइकिल इन तरह रा साधन प्रयोग जका है 16 लेन 20 साल रो टाबर बहुत ज्यादा करे कहीं तो टाबर छोटो है माए देखे के हम दिरा दो आजकल कहीं है बे
1: आड़ा करे रोज रोज
0: हाँ रोज रोज घरे महीने के नहीं माऊ तो बस में जाऊं तो 2 घंटा ज्यादा लागे न्यू लागे उए न कहीं पचके भाई बिजली वाली दिरा दो इलेक्ट्रिक बैटरी वाली दिरा दो के लाइसेंस नहीं है तो बोल लर्निंग लाइसेंस में जकी आवे वह चीज दिरा दो भाई देखो आव जाव करनो पड़ी टावरा ने भी लेकिन थोड़ी सावधानी अगर बच्चे ने थे मोटरसाइकिल दिरा और 18 साल रो है कटी कोचिंग में कटी पढ़ने जावे करे तो उए ने 2 मिनट बैठन हम जाओ के भाई भारत रे महीने इन तरह रा मोटियार आ मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो कई तो जका है मांझा माते पड़िया है लाखों की तादाद में और वार्षिक अगर आंकड़ो काटा तो आश्चर्य कि कई बच्चा जका है आवते जावते काल ग्रसित हो जावे दुर्घटना में बाणी मौत हो जावे।

0: सही कहे गुंदर भाई, तो माई ताने चाहिए जाए कि जिका आपरा टाबरिया है वन आप गाड़ी घोड़ो दे रिया हो तो सीमित मात्रा रा मैंने प्रयोग करनी इजाजत दो आप। और साथ साथ कई अड़ा टाबर हूँ आगा रखो जिका हड़का माते खाली हड़का माते गाड़िया ले जावे और स्टंट करे तो वाणी ओडा ओड आप रो टाबरियो भी करे तो दुर्घटना रो देखो शिकार हो जा कर जा और जन जी की हानि है गुरविंदर भाई हो जा। तो ऐसी की चीजा है खास तौर से ध्यान रखना है और जिका मोटा साधन है उनरो प्रयोग कराओ आउन जाऊन मायने ताकि तकलीफ भी नहीं होवे और जिको गर्मी और लू रो जिको समय इनसे भी बचाव कर ले
1: इनसे ही बचाव हो जावे। अब आजकल तो यातायात रा साधन घने
0: हाँ
1: और देखो के दिनेश भाई भारत दुनिया रो एकमात्र देश है आज लाल कितना दिनों ओ खाड़ी संकट चल रही है अमेरिका रे ईरान रे दरमियान युद्ध चल रही है जितना भी तेल उत्पादक देश है वह सब इनमें चपेट में आयोड़ा है और आपा 90% तेल जको है वो बाहरों लावा
0: आयात करा सा
1: और दुनिया रे हर चाहे वो कितो ही लूटो देश हो चाहे कितो ही गरीब देश हो तेल रा भाव दुगुना तिगुना चुगुना हो गया लेकिन कठे न कठे आपानी सरकार आ व्यवस्था कर रही है कि भाई तेल री कीमत नहीं बढ़े। दिनेश भाई देखो तेल री डीजल और पेट्रोल री कीमत में जो ही बढ़ाव हो गया नहीं सीधो सीधो ये रो असर अर्थव्यवस्था माते पड़े। आज अब डीजल महंगा हो गया तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन रा साधन है वह महंगा हो गया वह महंगा हो गया तो सामान मान लो कोई चीज एक अठाऊ अहमदाबाद पुगावनी 10 रुपये में जावा 11 में जाई तो सामान माते आ रेट बढ़ जाये
0: हर चीज माते बढ़ी सा।
1: तो अब लारला दिना ने आप देखा कि दुनिया कितनी किल्लत में रही कितनी परेशानी में रही कितनी महंगाई में रही एड़े में अब आपने कोई सरकार निर्देश देवे कोई भुलावन देवे तो उन्हें मानना भी बहुत जरूरी है कि आपानी जकी सिंचित धन है देश रो हमाल राखनो है बारे नहीं जानो चीज कमो कम अगर आपा कोई बारह चीज मंगावा जना ही चाहिए। अब देखो भाई इमें देखो देश और घर एक ही चीज है दिनेश भाई
0: बिल्कुल
1: यू हम जा कि आप रे कने अगर 1000 रुपया है थे बार जान खर्च कर दिया तो कहीं
0: अपन का तो रिया को नहीं
1: बैलेंस जीरो हो गया और काले कोई अब कहीं आई कोई नई चीज हुई कोई काम काज हो या घर वास्ते चाहिए तो आप कटो लाओ तो घराला नहीं कहो भाई जाओ कटे उधार लाओ
0: बुलावन है सर।
1: हाँ तो उन्हीं तरह सरकार ही आई बुलावन दे के भाई आप कम कम ऐडी चीजा खरीदो जिम आपानी मुद्रा है जबकि विदेशी मुद्रा में बदले और आपानो खजानो खाली हुए आ स्थिति नहीं आवे इन वास्ते आपा कम कम वे जबकि गैर जरूरी चीजा है वे विदेशों मंगावना बंद करना खास तौर माते एक बहुत बड़ो तबको है दिनेश भाई उच्च मध्यम वर्गीय भारत रो जको भ्रमण करने वास्ते जावे विदेशा रे महीने महंगे महंगी जगह क्षेत्र है उठे जावे घूम नावे तो भाई साल 6 महीना अगर ये ना आपा धीमो कर ला रोक ला
0: दाबदा हो की फर्क
1: तो आपने कठे बाद में समस्या नहीं आवे। आज अगर भारत रे महीने भारत रे सिंचित धनरी बात करा तो संतोषजनक बहुत ही बढ़िया स्थिति है लेकिन उरे बावजूद ही आपा एक कदम पहला उठा ला तो फायदो तो अपने घर ने ना अपने देश ने
0: सही कह गुरुंद्र भाई बड़ा लोग कह था कि किणी भगत अगर कोई अब कही आवेंसा तो पहला आप रोजी को परिवार है उन महीने हैंग एकजुट हो परान देखो प्लस में पॉजिटिव सोच आपने राखनी जरूरी हो जा। घर में अगर आप देखो पॉजिटिव सोच नहीं रखा एक मते मते हाल रही है दूजड़ो कड़नी हाल रही है तो देखो वो परिवार मजबूत नहीं बन सके। जो आप बात बताई हो तो आज की विदेशी मुद्रा है अपन देश रे मायने रह वाला तो अपन 18 जो को संचित भंडार है वो ज्यादा रहला और अपन जे दूजा देशा ने दे देला तो अपनो तो खजानो खाली वेला आ तो हिदी बात है हैं। और जो अपन बात का गुरुंद्र भाई जी आप स्कूल टबरियरी बात करी अपन कटी आवनो जावनो वे तो नेरी नेरी गाड़िया ले जाओ ने कट जरूरत है तो आप सामूहिक रूप में आपने मोटी गाड़ी में ही हाल जावा
1: लाख रुपये मेरी बात कह दी दिनेश भाई के तेल जको है जको थारी मोटरसाइकिल में बड़े थारी कार में
0: स्कूटी में बड़े
1: गाड़ी में बड़े ओ हैंग रो हैंग सरकार विदेशों लान थाने देवे है उयरा भाव दुनिया में सब ज्यादा कम है रेट बढ़ाई नहीं है तब आपानो भी कर्तव्य बने के आपा ईरो कम कम उपयोग करा बिजली री बचत है भाई तो बिजली रो उत्पाद हो एड़ो एक स्लोगन चलतो नहीं हमें तो घर घर सोलर ला गया बिजली रे मायने आपा एक तरह देखा तो पगा खड़ा होने री स्थिति माता
0: बिजली बचाओ रो होश
1: है ना तो बिजली बचाओ की करतो बिजली री बचत बिजली रो उत्पाद है
0: कल कारखाना चालता बिन बचत
1: तो ठीक उन्हीं तरह है जका भाई आपा एक तो या तो वैकल्पिक

0: एक वाहनरी व्यवस्था करा, बैटरी जका ईवी जकी गाड़िया वाने प्रयोग करा। अगर कोई नया खरीदार है तो वे भी एक तरह जान देखे ईवी हाकरी है आ हाकरी है,
1: नयो मार्केट विस्थापित वैसा,
0: तो नए बाजार की तरफ, नई सोच की तरफ, नई दुनिया की तरफ आपने बेहना चाहिए। और अगर मान लो कठे आप पुलिंग कर जा सका, चार जना हाथे जा सका, चार गाड़ी अलग अलग ले जान, डीजल बाड़ान उठे आप चार जना एक गाड़ी लेन जावा, तो देखो फायदो थाने फायदो हो, जना देश ने फायदो हो, जो ही थाने फायदो यो नहीं देश ने फायदो यो नहीं।

0: सही कहो गुरुदेव भाई। और भारत एक बहुत मोटी जनसंख्या वाला देश है, अटे हर तरह की जिकी सुविधा जिकी है, हर मानस ने चाहिए। थाने भी देखो चौका चौका पकवान चाहिए, जी मैंने मने भी चाहिए। तो कोशिश आ करा कदी कदी आप जो व्रत है बड़ोलिया करें जनिसा, तो उन वक्त देखो एक टाइम भी आप रोटी जिमला कर ला। जो आप बात बताई बिजली की बात बताई, इन साथ आप जी का पेट्रोल ईंधन की आप बात बताई, तो कई अड़ी खवनी पीवनी चीजें भी है जो को अपन अटक देखो निपजे को नहीं, तो वही अपन देखो दूजा देशों बारू मंगावनी पड़े सा।
1: देखो
0: तो है कि जी तो है जी तो बाप रो।
1: देखो खाउन पीउन की बात है बा एक अलग है, लेकिन आप भी ने शौक रे मुजब मंगावा। कई तो जका पेट मील वे जका पालतू पशु पालियोड़ा, जो मान लो कुत्ता पालियोड़ा है मिनी पालियोड़ी है, आनो जको खानो है वो भी कई विदेशों मंगावे, उरी तादाद कोई छोटी मोटी नहीं है, वो आंकड़ो भी बहुत मोटो है। कई एड़ी जकी सौंदर्य प्रसादन सामग्रियां है जकी विदेशों मंगावा, जके भी गैर जरूरी सामान में
0: एक तो आवश्यक को नहीं।
1: हाँ तो क्यों रो मतलब है गैर जरूरी जितनी भी वस्तुआ है जकी आप विदेशों मंगावा। वैसे दिनेश भाई आपने इन बात माते फक्र करना चाहिए जै के आप लगभग जितनी भी जरूरत चीजें है उगे उत्पाद करा।
0: हाँ।
1: और आपने 140 करोड़ आबादी वाले इन देश ने अगर विश्व गुरु बनना है, विश्व की पहली ताकत बननी है, तो भाई हर चीज हुई ले नवजाज तक खुद बनानी पड़ी, उरी क्वालिटी टॉप टॉप राखनी पड़ी, खुद बना उपयोग कर दूजा देशा ने भी देनी पड़ी, जनेज आपा विश्व गुरु बन सका।
0: सही कह गुंदर भाई, बड़ा लोग क्या होता है कि आप रो घर है परिवार।

0: हरे गांव है ढाणी है जदीद सुदृढ़ और विकसित वेला के उठे भांत भांतरा छोटा मोटा लघु कुटीर उद्योग वेला उठे रेवन वाला जी का जन मानस है आप उठी काम करेला और बैठा बैठा चार पैरी जी की ओपत है बा बारू कैंसे लेला तो ओ जी को समय ओ मैं अपने सामी आ रही
1: वो
0: है
1: तो हम
0: कर
1: देख
0: लिया।
1: लो नी शहरा रे महीने जका नौजवान रहे ने कार्ड रो प्रयोग करे
0: हाँ
1: तो वो क्रेडिट कार्ड है वो इन टाइम को पड़े ने वो खट आप रे जरिए मोबाइल पे दे देन के आई जना दे दूं
0: हाँ
1: तो उधारी में गाड़ी और घर चले जना भाई दिक्कत आई।
0: आयसा
1: उन्हीं तरह अगर उधारी में देश जका लोग चला रिया है आपा देशारी अगर आर्थिक दशा और दिशा देखा तो बड़ो मामलो खराब है। आज आपा आत्मनिर्भर हाँ एकजुट हाँ इन वास्ते देखो एक परिवार जदि विकास कर सके जदि आगे बढ़ सके जते उन परिवार में सामूहिकता री भावना हुए ठीक उन्हीं तरह एक देश तरक्की जदि कर सके के देश रे मायने रहन वाला सभी लोग उन देश ने एक परिवार मानता थका सामूहिक भावनाओं प्रेरित हो जबकि आज धरा तो पूरी दुनिया ने एक परिवार माने भाई आपनों तो स्लोगन ही वसुदेव कुटुंबकम
0: हाँ
1: एड़े में दुनिया में कठई पारिवारिक इकाई री अगर संरचना जिती आपने इन धरारे महीने है इन भारत देश रे महीने दुनिया तो आपने अठेरा परिवार देखने आवे।
0: सही कह गुंदर भाई आपने जी का संयुक्त परिवार जी का है दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई सब बहना बुआ हैं जी का हाथ रखने जी की परंपरा है। आज भी आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखने जोग मिले है कई हैरा में भी मोटा मोटा घर है आना टाना पड़े तो देखो एक चूल्हे रोटी बने है हैंग भाई सैन बैठन जी में गुंदर भाई आप बात कही वसुदेव कुटुम्बकम पूरो संसार इज अपनो परिवार है तो बाता बाता में मन याद आएगो कि काले विश्व परिवार दिवस भी है।

0: काल होगी तारीख 15,
1: हाँ
0: तो विश्व परिवार दिवस मुझे साथ ही आप इन जरिए रेडियो एक संकल्प लेवा के परिवार परिवार जकी मर्यादा है
1: हाँ।
0: और जीवनचर्या जका तौर तरीका है वाने और समृद्धशाली कराला। परिवार अगर विकसित और समृद्धशाली होई जनाइज देश आगे बढ़ेला और भारत राज्य का नौजवान देशा में विदेशा में कठी काम काज करे उठे आप रे परिवार साथे रहे तो वहां देशा रे लोगारी सभ्यता और संस्कृति बड़ी आकर्षित हुए के ए देखो केड़ा लोग है
1: हाँ।
0: और किन इकाई मुजब जके ने फैमिली के उन तरह रेवे। हमें देखो गांव में है चाहे शहर में है के भाई दादेरा जिताई होता है बहेंग लगभग एक ही जगह रहे
1: हाँ।
0: तो वो कटे न कटे कोई पैरी अब कहीं आई तो कटे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं
1: हाँ।
0: कटे कोई जरूरत पड़गी मैं था नहीं मैं बताऊं कि भाई अगर आप गांव शहर आ गया और आप उन गांव राज्य का आपस में परिवार मुजब रह रिया हो तो कई चीजों आपने आर्थिक मजबूती मिले। गांव जावनो है तो आप फोन कर दो कि नहीं कि भाई फलानो गांव जा रही है उरे हाथे जा सको तो आप रह यातायात में फ्री हो गया। कटे कोई ब्याह शादी है वाहन भरावनी अब थे एकला जान बटे भराओ एक आप परिवार कोई जा उरे हाथे भरा दो। कोई मान लो छोटी मोटी अब कई आई है तो थे बैंक में चक्कर काटो लोन ले नहीं तो आप व्यवहार मुजब आप
1: घर परिवार
0: घर
1: रुपया मिल
0: परिवार
1: जासा।
0: तो और आज अगर दुनिया रे महीने भारतीय ताकत रो जो को एहसास हो रही है
1: हाँ वो संयुक्त परिवार है।
0: ये रे लारे कठेन कठे भाई परिवार है जका निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब जकी गांव निकलोड़ी प्रतिभावन छात्र छात्राओं देश दुनिया माते आपरो नाम और परचम लहरा रिया नी तो ये में मायतारो भी बहुत बड़ो योगदान है कि आज अठे मायत जको है खुद गीले में हो टाबरा ने हुके में सुलावे खुद हैंग अब काई झेल और टाबरा ने मुंगी मुंगी जकी पढ़ाई कराउन रो प्रयास करावे। हैंग चीजा में कटौती कर दे भाई घर में आ देखा के नहीं भाई टाबर पढ़ रियो है उगेरा आने रहा जाने रहा फीस रहा हैंग खर्चा रे वास्ते घर रे महीने
1: पाई
0: जितक
1: पाई जोड़े माते
0: पाई
1: खर्च
0: पाई
1: करे सा।
0: पारिवारिक सदस्य रोक ले के नहीं
1: हाँ
0: भाई हम टाइम आऊं नालो है वा फीस भरनी और
1: इन टाबर ने पढ़ावनो है इन
0: तो
1: भाई ने पढ़ावनी है।
0: हाँ इतो सेक्रीफाई जके ने अंग्रेजी में कहवा
1: हाँ
0: और इतो समर्पण परिवार हो दुनिया में मन नहीं लागे कटे और होवे।
1: सही कहो आप जी की एक बात की मारे ये में लगी के अपने जी का युवा मोटियार है बाला जी का लोग जी का है अपने परिवार स्टडी करे तो ऐडा उदाहरण मारे हमें भी आयोड़ा माइताना बारे विदेश में ले जावे तो वे उठ देखे के भाई देखो ये बेटा है आ दादी है आ पोती है तो वो परिवार जी को अपने अठा तो है जे पहला दिन करने अठा आता तो हमें अपने जी का युवा मोटियार है पढ़िया लिखिया बाले देश में जान माइतारी कई कदर वे बतावे।
0: बिल्कुल देखो भाई के परिवार जकी है वह एक तरह स्थायित्व री पहचान है और आपने देखो के पहला ठाण दे कनी भाई गाय लावता
1: हाँ,
0: भैंस लावता
1: क्या खूंटो काढ़ो ऐसा
0: खूंटो केड़ो तो आपने परिवार री जकी सोच और समझ है नी आपने समाज और सभ्यता और संस्कृति में अलग है आ क्यों है क्योंकि आज की सभ्यता है आ सब पुरानी सभ्यता है
1: सनातन है सा
0: और इन सनातनी सोच जटे पूरी पूरी धरती ने पूरी पृथ्वी ने आपा परिवार मानर वाणे जीव जंतु पेड़ पौधा रो ध्यान रखन री बात करा चाहे बाणी कोई रंग वो कोई रूप वो कोई नस्ल वो के नहीं भाई केड़ी है तो वो आपानी इन धरारो जीव है धरारो पौध है धरारी प्रकृति है तो आपा जबकि पूरी पृथ्वी ने परिवार माना तो घर माते तो ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई और इन पारिवारिक संरचना नी इन पारिवारिक इकाई रो सम्मान भी करना जरूरी है।
1: सही कहो देखो चिड़ी कमेड़ी सब रो आपा ध्यान रखा एक ही ठिंगले में पानी दाणो चुगो सब देवा और बातें देखो गणी करी
0: गणी
1: प्रोग्राम रो टाइम पूरा वेरियो है
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर विष्णु
1: और दिनेश राणे जाने सीख दे रहा हूं
0: राम राम।

0: गर्मी पड़े अनूठे गेट खोलो।
1: भाटक ओ डाली अड़िया मैं आवरी कमरी में आवरी कौन है?
0: राखी पग लगो।
1: ओ राखी नी राखी आवरी भाई आवरी राखी मैं आवरी भाई कटे दिन बदिया है जी थारे को कौन जचूड़ी है जी को दिन बदते थे आओ कौन है कौन है?
0: अरे दोपहर में तावड़ो तीखो पड़े जन में क्या थोड़ा शाम पड़ी जाओ।
1: हाँ जाओ जब बस की इनकी ले नहीं आओ।
0: हाँ कहीं का ले रही
1: हूँ। अरे मार तो भाई देखे ए पड़िया देख है हूँ है जी को मतीरिया मंगयान खरबूजिया मंगयान आने तरबूजिया मंगयान आंबा मंगयान अमलोड़ी लायान शरबत लायान नींबू लाया पुदीना लाया ओड़ा लाडू लाया खसखस लाया है लाल मेली में गावे जू भाई शहर कोई है
0: पूरी व्यवस्था कर रखी है मतलब गर्मी रेनी।
1: हाँ गर्मी रही। हाँ एक कमरे में फूलर लगा दियो।
0: फूलर लगा दियो।
1: हाँ बारे है जी को कह नहीं कह बारिया माते तापड़िया भिजोड़ा पड़िया पड़िया
0: पूरो बिचाव कर रखे हम लोग गर्मी से वहाँ पर
1: कह तावड़ो में तावड़ो दोरो है भाई
0: बहुत दान के तो बहुत तेज तीखो पड़ रहे तावड़ो
1: तो हमेशा ही पड़े है ना कह भाई देखे तावड़ा पड़िया तपिया बिन में कटे को
0: आज के अब तो नहीं दिन बरसू मैं सोचो कल निकले हुआ तो नौलो बाख ने जार जूस और कई पियो।
1: ओ ठीक ठीक है कल गया सी ना आज बारिश है।
0: हाँ परदोस व्रत है आज मारे।
1: ओ ठीक ठीक है भाई की कोनी व्रत रहा क्यों फायदे ही है क्या पेट में थोड़ी गड़बड़ में भाई है जिसको कह मिट जा आप कह नहीं के भाई के आस्थान विश्वास ही मजबूत हो जाए
0: दोनों काम हो जावे
1: वाकई कौन भाई तावड़ियों पड़े पड़ दे के कह भाई राखी।
0: हाँ नोलो
1: तो आप तो इतो जाप तो करियोड़ा बैठा आके दे के है जो ठाडो भाई रेमी है न हैंग पाता है पर मुठी एक सीढ़ी है उन्हों कुण धनी दोरी है
0: सही है
1: दोबो एक कबूतर है उन्हों कुण धनी दोरी है दे के दूजा जिना कह नहीं कमेड़िया ही है लोड़िया ही है आज चून सुगो हंगा नहीं सही जे दाव डांडो है तो कह भाई पाल तू ही है कह नहीं के बंद बिला भी है
0: बिल्कुल ऐसा
1: तो भाई देखे मैं तपे तो कटी थोड़ा घणो मेड़ हो जा तो कोई पीनो पानी रिंद रोई में जिनवरिया है बारे हो जा पर आपन भाई देखे थोड़ा घणा कोई कुंडिया भर दो कोई खेली भर दो
0: हाँ।
1: थोड़ा कह नहीं पुनरा काम कर लो
0: मैं तो रोज भर रखू जेठा महीना है अपन धर्म हुआ थोड़ो
1: अरे भाई धर्म तो कह नहीं के भाई कोई ने हुक पुगाओ वो धर्म है
0: सही है
1: दुख पुगाओ तो वो है जिको कहो कह
0: पाप भाई, लगे भाई
1: पाप लगे
0: सही बात है
1: समझे नहीं यही है जो कह नहीं धर्म है यही है जो कह नहीं अधर्म है
0: बिल्कुल ऐसा
1: ठीक है दूजो भाई यूं है हुनियो के भाई है कहो कह राखी थारे है जो कह नहीं टाबर पड़े में कलकत्तो देख यूड़ो कलकत्ते रहती है नी
0: कलकत्ते रहती कलकत्ते घूमने गई थी हूँ बनी रहती है घूमियोड़ भी हमारे कलकत्ते
1: घूमियोड़ा हूँ तो कोई
0: बंगाली बंगाली रहे बड़े सब
1: तो बंगाली पे आप रहते हैं क्या नहीं मारवाड़ी रहे मारवाड़ी रहे तो घना घना कह अट मारवाड़ी है तो अट दूजोड़ा कम है दूजोड़ा के कटी जाओ तो उठ बे घना है ना कम तो बंगाली है जो
0: मैं थोड़ी बहुत बंगाली सीखी बड़े
1: ओ हो ही की कहानी हुनी है
0: हाँ, सुनी तो बोल देती हूँ
1: तो मारे घर आओ इन कम
0: आमी आस्ती तो मार बड़ी
1: ओ हो
0: आमी आस्ती तो मार बड़ी तुम्ही को तो टाइ घुमाओ
1: कटे घुमाओ तुम्हार भाई कटी बाहर जाऊँ को
0: आमी दस टाइ घुमाए
1: ओ हो वाह करे वाह
0: तुम्हार कौन रंग पहुँच दो
1: है?
0: तुम्हार कौन रंग पहुँच दो
1: मन था कौन भाई अकाउंट की

0: बोले
1: अम्मा नील रंग पोस दो। कि आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे तो नीला रंग पसंद है। हाँ
0: तो थन खाऊ ना कहीं पसंद है
1: इडली। अमर इडली पोस दो।
0: ओ हो बाबाजी
1: ना
0: ना
1: तुम्हें कोखन उठो। तुम्हें कोखन उठो।
0: मैंने कहीं चक्कर क्या है बुझे बात करे।
1: अम्मी सकाले तड़ा तड़ी उठो।
0: देखो
1: अवे देखो नोलो बामने
0: अमे आवे की कोई कटे हूँ ना आएगी। मैंने हूँ नहीं जानू जी को मैंने
1: अमार गान पोस दो बाबा। अमार गान पोस दो।
0: मैं कहूँ तो की क्या बोल दे बात करे। ये कौन
1: की बोल बता। खूब बालो दादा खूब बालो
0: बालो बालो कौन को बालो बालो तू तो कह नहीं कर बालो ही हूँ तू जो कहूँ
1: तो मैं बताऊँ तो ना के

0: बात तो सही कही
1: बात
0: बोल रहे भाई ये खाने तो कहीं थोड़ा थोड़ा पूछ लो नी तो है जी तो कह रखी रखी है जी
1: क्या देखो बंगाली आवे ना भाई
0: हाँ आवे आवे भाई आवे वहाँ की कौन भाई आवे हमें यूं कर मुकड़ो गीत लो हूँ तो आई आई नी वो मन हुना दे वो मन मर कही है थोड़ा हम में आवे
1: आवे हाँ सुनो तावड़े गीत

0: Ah, vai quer, vai sapercar, ou do cantauro, e oi, sim, e oi, meio, e oi, hang, bata, oi,
1: सुख दुख सब आवे दुख
0: हाँ,
1: छाओ।
0: मैंने कटी रुके कोई बात आज तक ही को रुकियो नहीं। खैर कोई बात नहीं भाई, ये हमें यूं कर राखी क्या, मैंने आज विगत बात जानकारी बता, कौन जन्मिया कौन फोत होया,
1: हाँ
0: समाज देश और है जो दुनिया रवाज में कई करियो।
1: अच्छा बताऊँ हाँ, देखो विगत बार बताऊँ दान बंगाली बात के निकल कत्ता रही तो मैं तो आज अपर फिल्म निर्माता निर्देशक मृणाल सेन जी नी
0: हाँ
1: बोरी जन्म जयंती आज।
0: ओ जल्दी है जी, मैं क्या बंगाली बोलने झुकी ये है बंगाल फिल्म बनाओ था।
1: हाँ बंगाली फिल्में बनाता भाई 14 मई 1923 में जन्म हुए बोरो भारतीय फिल्म प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रोडा और अधिकतर फिल्में बेरी बंगला भाषा में रही।
0: वाह भाई की कौन बे, आप ठोड़ माती उठी है जो सेवा चाकरी करी अदाकारी फनकारी बताई तो आने कोई नहीं भूल सके बंगाली
1: हाँ।
0: मिनक हैंग है जो आने याद रखे।
1: हाँ, इन पद्म भूषण से सम्मानित भी करी
0: हाँ
1: हुए।
0: कोटि कोटि नमन है, मंदेरा भूल चला हूँ बड़े।
1: हाँ बड़े आज जन्म हो रहे अपोरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जीरो बे 1883 में जन्म आंध्र प्रदेश में प्रमुख भारतीय वकील रोड है, न्यायविद और संविधान सभा सदस्य भी रोड है। वे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई थी।
0: ओ ठीक ठीक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हाथ बैठा और उठो सलाह मशुरा करिया चौका कह नियम कानून कायदा बनाया।
1: हाँ जहाँ अम्बेडकर साहब ने भी बोरे के सभा में योगदान सराहना करी बहुत बेबी।
0: आ करी भाई देखे कह गुणी विद्वान मिनखा और परोपकारी हाज को सौखी कह नी कानून ली थरपना करन गया तो आज हैंगा नहीं कह नी भाई हक कूद मिलिया
1: बिल्कुल
0: तो
1: मिलिया
0: आ नहीं है जिको कोई नहीं भूल सके। अल्लाह दी कृष्ण स्वामी
1: अय्यर जी ने,
0: अय्यर साहब ने
1: अय्यर जी ने
0: कोटि
1: हाँ।
0: कोटि नमन है, मंदड़ेरा फूल चलावा बड़े।
1: बड़े आज दिन जन्म उड़े अरुण चंद्र गुहा जीरो वे भारत रा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रोड़ा, राजनीति रा कार्यकर्ता भी रोड़ा, कानूनी शिक्षा वर्ग प्राप्त करोड़ी वे क्रांतिकारी गतिविधियां थी जी थी नी बने बे
0: ओ ठीक है, भगत
1: हाँ।
0: सिंह जी ने है जिको कैन चंद्रशेखर आजाद बार हाथ रियोड़ा।
1: हाँ पहली दूसरी और तीसरी लोकसभा सदस्य वे स्वतंत्र बाद रियोड़ा है।
0: हाँ भाई देखे देश री आजादी रही क्यों है जो अत्याचार जुलम सहन करिया और पद है जो कह नी वोटा में है जो को कह भाई आप रो नाव करियो तो आनी कोई भूल नहीं सके। कोटि कोटि नमन है, मंदेरा फूल चढ़ाऊ बड़े।
1: बड़े आज इन यहाँ पर जन्म उड़े संभाजी रो
0: हाँ
1: छत्रपति संभाजी महाराज मराठोरा पूर्व छत्रपति रियोड़ा
0: हाँ
1: 14 मई 1657 में बोरो पुरंदरगढ़ में बोरो जन्म उड़ो है
0: हाँ
1: और वे जादव शिवाजी राजे भोसले मराठा साम्राज्य आदित्य छत्रपति राजा था, लेखक विचारक और शिवाजी रा उत्तराधिकारी रेवड़ा है।
0: ओहो शिवाजी है नी, शिवाजी तो भाई देखा के भाई मराठा सम्राट था और बे घनो कह नी के संघर्ष करियो
1: 121 युद्ध लड़िया वे
0: हाँ हारिया एक में कोनी
1: एक भी हारियो कोनी।
0: संभाजी मारा है जो कह नी बेटा हा
1: बेटा था
0: तो भाई है जो कह नी भाई कह नाउ आप रो इतिहास में होने रे आ करूं है जो बकेड़ा और बे बिरला मिन कहा भाई देखा उन टाइम रा घड़ा कह नी की झगड़ा होता और आपस में कह नहीं के कोई राजा महाराजा बादशाह होता बहू है जिको आपस में राज रहे लेन के ही है जो कह नहीं युद्ध होता तलवार चलती
1: चलती सर
0: तो पाँव कह नहीं घोड़ा छोड़ती बंदूक है जिको कह नहीं की भाई गोलियां छोड़ती तो भाई अड़ा बिरला मिनका नहीं कोई नहीं भूल सके और संभाजी नी कोटि कोटि नमन है परबते पौर है जो कह नहीं की भाई धोख देवा मंदेरा फूल चढ़ावा न मैं ए तो कह नहीं एक कह भाई सिंह वजड़ा हा
1: सिंह एकदम सिंह
0: ठीक है नहीं क्या मिन वो क्या मिन का जून बली ही पर शेर ही दिलेर ही
1: शेर दिलेर दिलदार हा बिल्कुल
0: हाँ
1: हाँ बिल्कुल ऐसा
0: क्या नहीं के अपराधी कई बात कह रही है भाई के सूर न पूछे टीपनो सूर न कह के देखे वार और सूर कह के भाई मरने ने माने हैंगो मोटो त्योहार
1: बिल्कुल
0: ठीक है
1: हाँ।
0: तो सूरा पाण हैंग बात है तो भाई कोई सूरो गीत सुना
1: बिल्कुल सुनो सा
0: हुना भाई बढ़िया चौको जो को मारू जी हो रो
1: बिल्कुल ओसी सा जी सोरो।

0: वाह भाई ये वाह बात तो हंसी कही कि भाई सिंह सिंगी वह है और क्या के भाई क्या के लीक लीक सब चाले लीक छोड़ दो ही चाले सिंह सपूत वह नहीं बे है जी को लेन लेन को आले नहीं बे आप रे हिसाब हाले खैर कोई बात नहीं तो मैं बड़े
1: हमें जी का थाने फोत है जी का बताऊं
0: हाँ बताओ भाई
1: आज इन फोतड़ा जगदीश चंद्र माथुर जी 14 मई 1978 में फोत है इंदिर प्रसिद्ध नाटककार एकाकीकार आईएएस अधिकारी रेड़ा उत्तर प्रदेश की खुर्जा में
0: अरे मैं तो हाँ पढ़ा तो क्या नहीं आकाशवाणी में घर मोटे वाले मत रिया
1: बिल्कुल
0: कई नाटक लिखिया कई है जी को क्या नहीं रचनावा रची और आने टाइम में हूँ हुनियो का आकाशवाणी नाव है जी को
1: आकाशवाणी
0: जन्म अरे वाह साहब जगदीश चंद्र जी माथुर साहब जग में भलो काम कर गया और आने क्या नहीं कोई नहीं भूल सके आने कोटि कोटि नमन है मंदिरेरा भूल चलावा बड़े
1: फोत थोड़े आज अपर कंडा स्वामी कुप्पू स्वामी 14 मई 1963 में फोत हो गया शिवानंद जी स्वामी शिवानंद जी सरस्वती थानी बिनोम सु जाने जाता मूल नाम बेरो कुप्पू स्वामी और योग गुरु था हिंदू आध्यात्मिक शिक्षक बिरोड़ और वेदांतरा समर्थक बिरोड़
0: भाई जय जय गुणी विद्वान मीन का धर्म कर्म।

0: की बात आ योग री बात करता और मान के ने सो को मार्ग बतायो तो झुकू कह नी मिन कान कह नी हारो लागो तो बानी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल सदाओ भले।
1: आज इन्हीं फो थोड़ा आचार्य रघुवीर सिंह जी 14 मई 1963 में फो तो एक महान भाषाविद प्रख्यात विद्वान कोषकार और राजनेता रेवड़ा राष्ट्रवादी इंदिरा जारो शब्द है जिको सबने दिया था।
0: अरे हाँ भाई क्या रचनाकार हा गुणी विद्वान मिनख हा आज सेवा चाकरी करी भाषारी करी मिनकारी करी
1: बिल्कुल करी
0: और बात भली हुई तो कोटि कोटि नमन है आने
1: और सरस्वती विहार रा भी संस्थापक
0: रियोड़ा तो आने कोटि कोटि नमन मंदड़े रा फूल चढ़ावा अन बड़े
1: बड़े आज नी फो थोड़े एन जी चंदावरकर जी 14 मई 1923 में फो तो गए और पूर्व नाम तो नारायण गणेश चंदावरकर प्रार्थना समाज रे संस्थापकों में था और भक्ति संप्रदाय से बड़ो विश्वास करता है।
0: करता भाई आप रिटोर्ड में चौको काम कर गया तो आनी है जो कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा बड़े
1: बड़ा जी ने फोटोड़ा अल्लाह बख्श सुमरो जी सिंधरा पूर्व मुख्यमंत्री रेड़ा और ब्रिटिश कालीन भारत पहला था नी वे स्वतंत्रता सन पहला
0: बेड़ो हो भाई एक आंगण हो जब बेउट विया हुई अंग्रेज टाइम में
1: जमींदार रेड़ा सरकारी ठेकेदार स्वतंत्र संघ सेनानी
0: आप जग चावा काम कर गया तो कह नहीं के भली जुगो जुग कह के भाई बदल जावे बीत जावे नी तो मैंने कह जो भूलिजे कोनी तो आनी हकीकत रा गुल पेश करा कोटि कोटि नमन करा और मंदड़े रा फूल चढ़ावा हमें देखे भाई मारे मंदड़े री बात थे राखी भाई
1: जाना
0: ही हो अर्ज सुना एक अर्ज सुना भाई।

0: भाई ये वाला
1: ओयो जी
0: किनिया
1: सोरो
0: समझो जी वो रोगो कहनी माल तो अमृत रो घूटियो हाथ
1: ले
0: जावे
1: आम रस पियो लो, पहले
0: आम रस तो खेर की कौन पहले पहले पिया पहले माला फेरा
1: पाना पछा माला फेरिया, पहले आम रस पी
0: वात
1: लो।
0: की कौन आम रस दे दे भैया है जो ठाडो कह नहीं घूटियो ले ला तो बस कह नहीं ठाडो काल जो रही तो कह भगवान री जो थोड़ी कह नहीं भक्ति हो रही होई अरे वाह राखी वाह कह नहीं आंबाई ठीक लाई ने है तरबूज लिए पोदी नहीं लाई नींबू लाई हैंग है सारा है जगह पया मन बता दे हूँ दे दू
1: गर्मी छुट्टी होई नहीं बार तो
0: हाँ
1: कंप्यूटर सीखने गई हूँ,
0: वाह बढ़िया भाई
1: कला कहन कोई कला होनी चीजे
0: हाँ बस कह नहीं कला कला होनी चाहिए कला नहीं होनी चाहिए
1: कला नहीं कला होनी
0: हाँ
1: चाहिए,
0: वाह की कौन भाई
1: मैं तो
0: फिर
1: सीख
0: हमें
1: लो
0: मारू
1: कंप्यूटर
0: मारू कला मत करो
1: ना।
0: फिर तो रसोड़े में पधारो और बढ़िया है जिनको भोजनिया तैयार कराओ
1: बिल्कुल
0: और है जिनको कह नहीं के थारे मन जैसे जिनको थारे जैसे जिनको बनवा लो मुंह फेर लू भाई माड़ा और माड़ा फेर बैठो हूँ जिनसे थारे है जो कह नहीं के रसोड़ो हो जी तैयार और हमें तारा ही खासा ऊंचा आएगा न अंदर हुई पड़गो है न प्रोग्राम और टाइम ही राखी पूरो है
1: गुरु
0: तो
1: ऐसा
0: भाई सेना
1: हरी
0: लेवा
1: बता रही
0: ही
1: है।
0: भाई सेना लेवा ही
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये गीत है खेल खेल में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, आरडी बर्मन का संगीत।

ये गीत है चौदवी का चांद फिल्म से। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफ़ी की

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा

0: घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AI

एडीएमके के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
4: इंडियन डो
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: www.explore.inc प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर

0: में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: ये गीत है लव मैरिज फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: झूम के चले तो दिल पे

0: मेरा
1: जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा।
2: ये गीत है छाया फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

ये गीत है छोटी सी बात फिल्म से यशुदास और आशा भोसले की आवाजें, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: सर्जन। वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत। फिल्म है बातों बातों में।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित

0: किया जाएगा। केरला में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE.